अच्छा तो उसके पास जाओ और कहो कि हम आपके परवरदिगार के भेजे हुए हैं, तो बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाजत दीजिए और उन्हें अजाब न कीजिए। हम आपके पास आपके परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आए हैं और जो हिदायत की बात माने उसको सलामती हो। हमारी तरफ ये वही आई है कि जो झुटलाए और मुंह फेरे उसके लिए अजाब तैयार है। गरज मूसा और हारून फिरौन के पास गए, उसने कहा कि मूसा तुम्हारा परवरदिगार कौन है? कहा कि हमारा परवरदिगार वो है जिसने हर चीज को उसकी शक्ल सूरत बख्शी फिर राह दिखाई। कहा तो पहली कौमों का क्या हाल हुआ? फरमाया कि उनका इल्म मेरे परवरदिगार को है जो किताब में लिखा हुआ है। मेरा परवरदिगार न चूकता है न भूलता है।

वो वही तो है जिसने तुम लोगों के लिए जमीन को फर्श बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते बना दिए और आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे मुख्तलिफ नबातात पैदा की कि खुद भी खाओ और अपने मवेशियों को भी चराओ। बेशक इन बातों में अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं।

عرش فرش نو مظہر نور کیتا نور نبی دانا اپنا کدا شمس کدا

0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो आपने और उसके जल्द अमरीकी इलाइक़ो करार दियण जो ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फॉक्स न्यूज से गालाइंदे चयो आए त ईरान ते माशी दबाव विझी जंग खत्म करण ते मजबूर कंदासीं। जल्द आबरा और उसके अमरीकी इलाइक़ो करार दियण जो ऐलान कंदुसि।
1: अमेरिका जी धमकियों का हटजन वारा नायो अब नए और मुसबाबत फैसलो ईरान कंदो ट्रंप जे बयान ते ईरान जे परदे नायब वजीर जो सख्त रद्द अमल। काजिम गरीब आबादी जो चवण आए तो अब नए और मुस खोलण या बंद करण जो अख्तियार सिर्फ ईरान वट आए।
0: अमेरिका के नायब सदर जे डी वेंस जो चवण आए तो ईरान जंग में तेल और गैस जो कीमतों घट रखण पेरी तरजीह आए। ईरान के एटमी हथियार का रोकण भी तरजीह आए। अमेरिका बई मकसद हासिल कर रो है। ईरान की सूरत आल फित्री गैर तौर यकीनी वारी आए।
1: ईरान के परदे वजीर अब्बास अराग़ची है तो अमेरिका से बीहर गाल शुरू करने अना को भी फैसलो ना थो। सालिस मुल्क कतर और पाकिस्तान तरफा पैगाम के मुंतकली जो सिलसिलो जारी है पर उनको मतलब वो ना तो गाल शुरू थी वो
0: सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर अजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। वजीर अजम सदर के तारीखी दिफाई मकाम माहदे का आगाह कयो। सदर आसिफ अली जरदारी दिफाई माहदे लाए नेक ख्वाहिशन जो इजहार कंदे वजीर अजम ए फील्ड मार्शल सैद आसिफ मुनीर के कोशन के सारायो। फौज ए कानून लागू कंदड़ इदार के पेशवार सलाहियतन के खराज तहसीन। मुल्क में दहशतगर्दी नासुर के मुकम्मल खात्मे जो अज़म। सदर आसिफ अली जरदारी मौजूदा इलाक सूरत हाल के नजर में रखंदे आवाम के रिलीफ देने की जरूरत जोर भरीदे आम वायपे वार शन की बिना रंडक की फरहमी ए मुनासिब अगते दस्तियाबी यकीनी बनाई वे।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

न तकेरा चे न कोट में ओ मनाने अक्रब इले मिन हबिल अलवरीद वतुन आवें दास मारुन सामिलन दास हे कोठियों छड़े।

जनी जाथरन में वरथा वेण सहल ऊजे हक भंजल से सचू की सूमरा ओ जय सती सत न छदियो उहा मारुई मर जाई अचे उमर कोट में जहलोई न लजाई जा सागल सदाई उहा मार

0: जीअं शल पहिरी वञा तन ॾे लालाईअ जो लतीफ़ चए कर ॿुधन उठा मींहं माड़ीअ लॻुमि मेरो सभ जमा दर सीअं खेसि कायारी कांध जी हुतां अचे तीअं कंधु खणंदसि कीअं अॻियां मन मारू अड़नि जे अलो
1: मुस्तकीम इहो पवां

tamam.

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: ओ मुखम वसवाक डूंगर डो

में तारी

पुछन ॿियो भेरो हीअ कुर्बानी केरु थियो वञी खा विलायत में अॻियां अजीब चवल त हीअ कुर्बानी केरु थियो।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इंडोनेशिया के साहिली इलाके में जिलजिलो शिदत 70 रिकॉर्ड जिलजिले सबब केतरी ही इमारतू पट 20 जना फौत केतरा ही जख्मी। इंडोनेशिया साहिली आयल जिलजिले सबब रहवासी घर का बाहर निकरी आया। किरियल इमारतन के मलबे में दबियल मानून के बाहर कटने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

0: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: ट्रंप जो आपने हरमुज के जल्द अमेरिकी इलाको करार देने जो ऐलान न्यूयॉर्क में तकरीबन के खिताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है ईरान मुआशी दबाव विझी जंग खत्म करने ते मजबूत कंदासी जल्द आपने हरमुज के अमेरिकी इलाको करार देने जो भी ऐलान कंदस व्हाइट हाउस आपने हरमुज बाबत सदर ट्रंप के बयान के मजाक करार दे छो अमेरिका सां गालियुनि जी बहाली जो फैसलो नाहे कयो पैगामन जी ॾे वठि ॻाल्हियूं नाहिनि हूंदियूं ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राख़्ती चयो आहे त इस्लामाबाद मुफ़ाहमतनामे में जंग बंदी न पर जंग जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि थी हुई जंहिंजे अमेरिका भनकड़ी कई अमेरिका सां राब्तनि लाइ पहिरें वारा राब्ता हाणे मुयसर न रहिया आहिनि तेहरान अमेरिका सां राब्तनि लाइ वक़्ती रस्तो तयारु करे रही आहे जेको बाद में मुस्तक़िल रस्तो बि थी सघे थो

यमन के शहर अलमफाती से होसिन जो हमलों बिन सिक्योरिटी अहलकारनि समेत छह जणा मारिज विया। यमनी हुकूमत जे फौजी उहिदेदार चयो आहे त होसिन बागेन बंदरगाह ते सामान लाहींदड़ बहरी बेड़न ते पंज मिज़ाइल फायर कया। बिन जहाज़नि खे बाहि लॻी वई। हमले में बिन सिक्योरिटी अहलकारनि समेत छह जणा मारिज विया। सिंध के मुख्तलिफ शहर औरत समेत बिन जणन जा लाश हथ छाछरो वेझो घर के कमरे में औरत कविता मेघवाड़ जो फाहो लगल लाश मिलो है। सखरबेरा की सिटी पॉइंट बाईपास वटा खीरथर के नाल मां नामालूम शख्स लाश हथायो है। सुणप नी सघी है। अस्पताल मुंतकिल किया है।

0: सोलर एंड बैटरी से डायरेक्ट हले।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
4: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
5: ॾाढो सुठो
4: जी ए एफ एम 88 नेटवर्क
6: सिंध की आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: It's 11:15 AM.
2: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Aksar walidain hi sawal kanda aen ta asan dare ek dafo baran ke polio ja khatra pyariya aen ta wari bihar chho pyariyo mojo nalo mufti Muhammad Ahmad aaye ta endo asan jawab hi hua ही बार भी असां वटि अल्लाह ताला जी हिकु वॾी नियामत आहे। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: कर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते सुनी।

0: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: ट्रंप जो आपने हरमुज के जल्द अमेरिकी लाइको करार देण जो ऐलान न्यूयॉर्क में तकरीब के खिताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान ते मुआशी दबाव विझी जंग खत्म करण ते मजबूर कंदासीं। जल्द आबना हरमुज के अमेरिकी इलाइको करार ॾियण जो बि ऐलान कंदसि। व्हाइट हाउस आबना हरमुज बाबति सदर ट्रंप जे बयान खे मज़ाक करार ॾेई छॾियो।

अमेरिका सां ॻाल्हियुनि जी बहालीअ जो फ़ैसिलो नाहे कयो। पैगामनि जी ॾे वटि ॻाल्हियूं नाहिनि हूंदियूं। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राख़्ची चयो आहे त इस्लामाबाद मुफ़ाहमतनामे में जंग बंदी न पर जंग जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि कई हुई, जंहिंजी अमेरिका भंकड़ी कई। अमेरिका सां राब्तनि लाइ पहिरें वारा राब्ता हाणे मुयसर न रहिया आहिनि। तहरान अमेरिका सां राब्तनि लाइ वक़्ती रस्तो तयारु करे रहियो आहे, जेको बाद में मुस्तक़िल रस्तो बि थी सघे थो। यमन जे शहर अलमफाते होसियुनि जो हमिलो, ॿिनि सिक्योरिटी अहलकारनि समेत 6 ॼणा मारिजी विया। यमनी हुकूमत जे फ़ौजी उहिदेदार चयो आहे त हुसी बाग़नि बंदरगाह ते सामान लाहींदड़ बहरी ॿेड़नि ते 5 मिज़ाइल फायर कया। ॿिनि जहाज़नि खे बाहि लॻी वई। हमले में ॿिनि सिक्योरिटी अहलकारनि समेत 6 ॼणा मारिजी विया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पारां अॻूणनि फ़ौजियुनि जे मान में आजियाणो, मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि जी साराह। ISPR मौजूदु फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर पारां ॾिनल आजियाणे में अॻूणे फ़ौजियुनि जे सरबराहनि समेत वॾे अंग में रिटायर्ड आफ़ीसर ऐं जवान शरीक थिया। फील्ड मार्शल मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि ते संदन वाखाण कई। अॻूणे फ़ौजियुनि पारां बि अस्करी क़यादत ते एतमाद जो इज़हार। क़ौमी इतिहाद, अमुन ऐं ख़ुशहालीअ लाइ किरदारु जारी रखण वारे अज़म जो वर्जाउ।

0: नसीराबाद के मुख्तलिफ शाखन में ज़रई पानी की खोट, बिजली की लोड शेडिंग, बदमनी खिलाफ JUI जो एहतजाज, काठिया मोहला खां रैली कढ़ी अर्थर शाख के पुल वट धरणो हयो वयो। अगवाणन चयो त ज़रई पानी की खोट सबब आबादगार परेशान आहिन, शहरन खां फुरूं बेरोज जो मामूल बणियल आहिन, आबादगारन के पानी ॾेई अमुन बहाल करायो वञे। बलूचिस्तान के शहर ओस्ता मोहम्मद में आबादगार जो पानी कोट खिलाफ एहतजाज, आपाशी ऑफिस आलू धरणो, हिंदो माइनर के आबादगार पानी कोट खिलाफ एहतजाज कर धरणो हो। आबादगार शाखन में पानी खोट सब फसल सुखी रहा है, पानी फराम कर ज़रायत जिंदगी बचाई वन। सिंध के मुख्तलिफ़ शहर औरत समेत टिन जणन जा लाश अद कया। छाछरो वेझो घर के कमरे में औरत कविता मेघवाड़ जो फाओ लगल लाश मिलो। सखर के सिटी पॉइंट बायपास वटा कीर्तन केनाल में नामालूम शख्स जो लाश हथायो है, जिनकी सुणप नी सकी है। सखर बैराज में भी एक जणे जो लाश मिलो है, सुणप नी सकी। पीर जो गोठ भरसा गोठानन जो पुलिस के ज्यादतन खिलाफ एहतजाज, गोठ राहुजा जा रहवासिन पारा कूड़ा केस दाखिल करण, घरन ते पुलिस चढ़ाई खिलाफ एहतजाज कयो। गोठानन मौजूद पुलिस शागिदन के भी कूड़न केसन में नामजद कयो आहे, गोठ ते चढ़ाई करे फुरलुट भी कई आहे, इंसाफ कयो वञे। इंडोनेशिया के साहली इलाके में जिलजिलो शिदत 7.7 रिकॉर्ड, जिलजिले सबब केतरी हुई इमारतों पट, 20 जणा फौत, केतरा ही जख्मी। इंडोनेशियाई साहिल वेझो आयल जिलजिले सबब रहवासिन घर का बाहर निकली आया। किरियल इमारतन के मलबे में दबियल मानून के बाहर कढ़ने ला रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
3: सिंध के माथे का झूमर
4: GFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
1: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है और वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चा की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: अक्सर मान जो सवाल होंगे असा सही पोलियो की वैक्सीन 10 साल तीन छोती डी वे तो असके बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हों हाई रिस्क हूँ उनके अलावा असानी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरा सूबो पूरा पाकिस्तान तेज कर वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें उम्र के पोलियो लगी सके तो कें उम्र के वैक्सीन कर रेशो 10 साल का घट आ तेज कर असो रिक्वेस्ट है सभी के बूस्टर डोज लगे।
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादे खरीदें और पाए बेशुमार कीमती इनाम।
1: अक्सर वालदेन सवाल की दाहें तो जड़े असा जे बारन के पोलियो वैक्सीन लगी चुकी आ है, हाने बाद में उनन के केड़ी जरूरत पड़े थी। मोजो नालो हाफिज मोहम्मद इस्लाम नूनारी आ है। इन जो जवाब बिल्कुल आसान है। ये असाजा जे बार हन तो असाजी मामूली गफलत जे करे जिंदगी भर माजूर रहजी वजन था। अगस्त में दहन सालन तई जे बार आन पोलियो बूस्टर डोज जो है वो लाजमी लगराय। पोलियो जा कुछ अगर जरात रह जी भी वह अल्लाह के हुक्म से खत्म थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा के लिए महफूज रहंदो ऐं बियन जे लिए भी माज़ूरी जो सबब न बणंदो।
2: पंहिंजो शहर पंहिंजो घर सकरण ऐं सकरण जो आवाज़
3: GFM 90.8

NDMA चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक जी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। NDMA चेयरमैन पारा वजीर आजम के मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ब्रीफिंग। वजीर आजम पारा NDMA के सूबन से सहकार करने की हिदायत। शहबाज शरीफ चयो तो मुतासिरन के सहूलतू फराहम कई वन।

कराची जी अदालत में नौजवान व्यापारी मीर रजा के सी बुधड़ी संदस भाईवार मोहम्मद अहमद जी अबूरी जमानत में वाद जांच में सहकार करने की हिदायत। वकील जबरान नासिर चया है तो पुलिस इन वक्त ताई मोहम्मद अहमद के जवाबदार नामजद ना कर जवाबदार नामजद करण का सिवा गिरफ्तारी मुमकिन ना है। वाके वारी हंद ता कुछ वधिक शाहिदू मिलू हैं। मीर रजा के कतल खिलाफ वालिद न पर नौजवान एहतजाज कर रहा है। मीर रजा के कातिलन की गिरफ्तारी चाहन था।

0: नसीराबाद जे मुख़्तलिफ़ शाखनि में ज़री पाणीअ जी खोट, बिजली जी लोड शेडिंग ऐं बदमनी ख़िलाफ़ JUI जो एहतजाज। काठिया मोहला खां रैली कढी अर्थर शाख जे पुल वटि धरणो हयो वियो। अॻवाणनि चयो त ज़री पाणीअ जी खोट सबबि आबादगार परेशान आहिनि। शहरनि खां फुरू बि रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। आबादगारनि खे पाणी ॾेई अमुन बहाल करायो वञे। बलोचिस्तान जे शहर औस्ता मोहम्मद में आबादगारनि जो पाणीअ खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। आपाशी आफ़ीस आॾो धरणो हिन रिमाइंडर जे आबादगारनि पाणीअ खोट ख़िलाफ़ एहतजाज करे धरणो हयो। आबादगारनि चयो आहे त शाखनि में पाणी खोट सबबि फसल सुकी रहिया आहिनि। पाणी फराहम करे ज़राइत ऐं ज़िंदगियूं बचायूं वञनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में औरत समेत टिनि ॼणनि जा लाश हथ छाछरो वेझो घर जे कमरे मां औरत कविता मेघवाड़ जो फाहो लॻल लाश मिलियो। सखर जे सिटी पॉइंट बाईपास वटां खीथर केनाल मां नामालूम शख़्स जो लाश हथ आयो। सुञाणप न थी सघी। सखर बैराज मां बि हिकु ॼणे जो लाश मिलियो। सखर में गुज़िरियल ॾींहुं हादसे में फोत थियल नींगर जो लाश रखी एहतजाज। नींगर हसन अली जे वारसन प्रेस क्लब आॾो लाश रखी एहतजाज कयो। गुज़ारिन मौजूदु पुलिस हादसे जे ज़िमेवारनि खे अञा ताईं गिरफ़्तार नाहे कयो। ज़िमेवार गिरफ़्तार न थिया त एहतजाज जो सिलसिलो जारी रहंदो। पीर जो ॻोठु भरिसां ॻोठाणनि जो पुलिस जे ज़्यादतियुनि ख़िलाफ़ एहतजाज। ॻोठु राहूजा जा रहवासियुनि पारां कूड़ा केस दाख़िल करणु ऐं घरनि ते पुलिस चढ़ाई ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। ॻोठाणनि मौजूदु पुलिस शागिर्दनि खे बि कूड़नि केसनि में नामज़द कयो आहे। ॻोठ ते चढ़ाई करे फुरलुट बि कई आहे। इंसाफ़ कयो वञे। इंडोनेशिया जे साहिली इलाइक़े में ज़िलज़िलो शिदत 7.7 रिकॉर्ड। ज़िलज़िले सबब केतिरियूं ई इमारतूं पट, 20 ॼणा फोत, केतिरा ई ज़ख़्मी। इंडोनेशियाई साहिल वेझो आयल ज़िलज़िले सबब रहवासी घरनि खां ॿाहिरि निकिरी आया। किरियल इमारतनि जे मलबे में दॿियल माण्हुनि खे ॿाहिरि कढण लाइ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी आहे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
2: सामान जो लामा पैदावार वधाए, फसल चमकाए, मुनफरिद फार्मूलो, सरायत पज़ीर असर, सुंडिन जे लाइ मौत जो परवानो, सारिन जी वधाए पैदावार, मुनाफ़ो मिले शानदार, सुंडियो डरी वञो, लामा अची वियो आहे। साहिबान ज़रई मर्कज़नि ते दस्तियाब।
3: स्किन केयर के लिए दुनिया भर में खवातीन का अव्वलीन इंतखाब फाइजा ब्यूटी क्रीम। इसमें शामिल अज्जा आपकी स्किन को रखे हेल्थी, खूबसूरत और जवान। फाइजा ब्यूटी क्रीम
4: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जैसे मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अनाब शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: अक्सर वालदेन ये सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए तो आसान जवाब यो आ ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आयन। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है जरूरी आए। असा जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुवते मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आयन उन्हन के ही बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
3: सुबह की

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

हेल्थ जसली बाल्ट अवेयरनेस अब्बार के स्पेशलिस्ट में है। अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज और हेल्थ केयर ब्रांड को हजारों लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए हेल्थ इज वेल्थ का हिस्सा बनिए। हेल्थ एक्साम स्पॉन्सर के तौर पर स्पॉन्सरशिप के लिए आज ही राब्ता करें। आगा जब्बार 03009312700।

0: सक्कर FM 88
1: सक्कर की आवाज दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मादली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती गना मस्ती। हाँ जी, तो आपकी सिद्धराव के साथ मौजूद मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे, अपने होने का एहसास दिलाते जाएंगे, आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो काइंडली ऐसा किया करें, हमारी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें, ठीक है, पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और इसके अलावा अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें पैनल पर भी ज्वाइन करेंगे और आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन करेंगे। अच्छा, मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया, यानी कि प्रोग्राम का टॉपिक ये है कि आप लोग ज्यादातर जो है ना, कुछ लोगों की आदत होती है एक ही वर्ड को बार बार बोलते रहते हैं, लगातार बोलते रहते हैं। अब जैसे आजकल मेरी ये आदत हो गई है कि मैं बार बार बोलती हूँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी कुछ भी हो, कोई भी बात चल रही हो, कितनी ही सीरियस बात क्यों ना चल रही, लेकिन मेरा हाँ जी खत्म नहीं हो रहा होता। तो बिल्कुल वैसे ही आप लोगों का भी एक कोई वर्ड होगा जो कि बहुत ज्यादा बोलना आप लोगों की आदत होगी, तो वो आज आप मुझे बताने वाले हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारे प्रोग्राम में रौनकें होती हैं। और उसके अलावा अगर आप अच्छा अच्छा गाना सुनना चाहते हैं, अच्छे अच्छे म्यूजिक कलेक्शन आपको पसंद है, तो आप हमें फरमाइश भी कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और यहाँ पर जो है ना, आप हमें ज्वाइन करते जाएंगे। आपके मैसेजेस तो बिल्कुल मुझे मिलते जा रहे हैं जो कि हम शामली प्रोग्राम रखेंगे, लेकिन मैं क्या सोच रही थी, ये बात है बिल्कुल, अगर ऐसा वाला सीन हो जाता है ना, यानी कि एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि भाई हमें ना अगर स्पॉन्सर्ड नहीं होता तो मैं इतनी इतनी बातें करती, ये भी बोलती वो भी बोलती, ये भी बात ही हाँ बतानी आप लोगों को। लेकिन जब स्पॉन्सर्ड नहीं होता तो फिर मैं सोचती हूँ कि अब मैंने क्या बातें करनी है ये चीज जो है ना, ये थोड़ा सा मुझे परेशान कर देते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। चले कोई बात नहीं, हम ऐसा करेंगे, आप लोगों के साथ बातें करेंगे। और पैनल पर यहाँ पर आपके मैसेजेस हैं जो कि आते जा रहे हैं, तो जी आते जाइए और आपको वेलकम कहते हैं। यहाँ पर सादिया अली हमें सबसे पहले ज्वाइन कर चुकी हैं। सादिया अली क्या कहती हैं, वालेकुम अस्सलाम एंड गुड आफ्टरनून, आप ही बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं। अब्दुल रशीद लाखेर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपको वेलकम कहा जाता है। हिदायतुल अहमदानी, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। मीर बालाच बिरोही हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। और सादिया कहती है यहाँ पे ये पोइट्री है, कुछ लोग जिंदगी से चले तो जाते हैं मगर दिल से कभी नहीं जाते, उनकी आवाज उनका अक्स हमेशा दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और चाचा खालिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेटा सिद्धू, हाउ आर यू, हो फाइन बेटा, यस आई एम फाइन, आप बताएं कैसे। और उनका अलावा निदरी भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद कहती है, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हम हैं हम, वालेकुम अस्सलाम समझने में थोड़ा टाइम लग गया, वेलकम कहती हैं आपको भी हमारी प्यारी निदड़ी। और सादिया कहती हैं टॉपिक मेरी आदत है वर्ड आपी आपी बोलते

लड़कों के साथ बैठे, भाइयों के साथ बैठे तभी आप ही बोलेंगे। उन्होंने कहा अलावा हजार खान जतो ये हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने कहा अलावा जी निदली कहती टॉपिक मैं तो तौबा ज्यादा बोलती हूँ, बात बात पर तौबा तौबा करती हूँ। क्या बात है, ये वैसे अच्छी बात है, तौबा तौबा किया तेरा तौबा तौबा। अच्छा उन्होंने कहा अलावा कहती पूरा वर्ड हाय अल्लाह तौबा, चले ये ठीक है ये ठीक है। उन्होंने कहा अलावा हिदायतुल्लाह क्या कहते हैं, अब तो मैं दोबारा ब्लैक हो जाऊंगा चलते का नाम मस्ती। नहीं नहीं आप टेंशन ना ले, आपके गोरेपन का बंदोबस्त कर देंगे हम। और हमदुल्ला मला खेल कहते हैं अपना हर काम ईमानदारी और नफासत से करें, क्योंकि आपका काम सिर्फ आपका मुस्तकबिल ही नहीं बल्कि आपकी शख्सियत भी बनाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। और ऐसे ही आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाएंगे और अपने होने का एहसास दिलाते जाएंगे। मेरे पास आप लोगों के मैसेजेस हैं, जाने की आप लोगों के साथ बातें की जाएगी। उनके अलावा पोस्ट के तमाम ज्यादा का ज्यादा लाइक और शेयर करना हलो मुख्य बुधायो पे अजय तवां कोई एड़ो वर्ड जेको तवां बार बार गालाइंदा हो जो तवां की दाढ़ी आदत हो जी वो लफ्ज गालाइण जी वो केड़ो लफ्ज है तां बुधायो पया। और हमारे साथ हैं हमदुल्ला भाई कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। हमदुल्ला मला खेल हमें सुन रहे हैं फ्रॉम कोयटा, वेलकम टू शो, आपको भी वेलकम कहा जाता है प्यारे भाई। स्मार्ट किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा स्मार्ट हाजिर आहे, स्मार्ट भा के चौथा भली करे आया। उनका अलावा बिल्कुल तमाम चू गालियूं आहिन। अच्छा किशोर भाई कहते हाँ असा लाए ही दर कदे बंद कंदो बुधाए छो तो तैयार थी वनो अलाए या खबर कोनी अन्या मुखे देसूं ता थोड़ो थोड़ो अगते हली हाली त खुले ला तो फायदो हासिल करो। उनका अलावा ही गानो हलायो आ गानो एंजॉय करना सी सो हाँ जी फरीहा परवेज की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गाना है, इस गाने को एंजॉय कर लेते हैं जरा। और भी मजे मजे के गाने हमारी लिस्ट में है तो म्यूजिक लिस्ट एंजॉय करेंगे और आप हमें ज्वाइन करते जा रही है। बताइए जरा कौन कौन कहाँ कहाँ से।

बात बिल्कुल ऐसी हो ही जाती है कि कई मरतबा हम किसी की बात पर यकीन नहीं करते और यकीन वैसे करना भी नहीं चाहिए, ना तो इंसान फरिश्ते हैं ना ही आजकल दौर ऐसा है कि भाई जान हर किसी पर यकीन किया जाए।

क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपने एंजॉय किया। और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करते जा रहे हैं 888 ऑन फेसबुक पर आपका हमारे साथ मौजूद रहेगा। और इसी के साथ साथ पूरी पूरी 3 बजे तक मैं आपके साथ हूँ जनाब। और यहाँ पर हजार खंड जतोई भाई कहते हैं आप भी अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, अगर हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। अल्लाह जाई उदा सिद्धार्थ आपने गाने की फरमाइश कर दी, ॾिसूं था बाबा ॾिसूं था। और निदड़ी त मां गाने जी फरमाइश कई आहे, मां हलाइण जी कोशिश कयां। दर्दे दिल आ चुकी है, दर्दे दिल कहती है। अस्सलाम वालेकुम चंदा जानी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी? चाचा कहते आप हमसे बातें करें ना, बातें करने तो आई हूँ, मेरा जरा मूड नहीं था बस फिर सोचा चलें जी कर ही लेते हैं। अच्छा निकाला हुआ हिदायत ला कहती टॉपिक आंसर सिद्रा गाना सुना दें, ये लफ्ज कुछ ज्यादा बोलता हूँ मैं, नहीं प्रोग्राम में नहीं, प्रोग्राम के अलावा भी लोगों के साथ बात करते हैं तो कौन सा लफ्ज है जो कि आप ज्यादा बहुत

मुझे बेटे बेटे जरा याद आ गई, आजकल आप लोगों ने नोटिस करा एआई के गाने कितनी अच्छी अच्छी बनना स्टार्ट हो चुके यानी कि ये जो बात पहले की जाती थी ना कि एआई इंसानों की नौकरियां खा जाएगा, मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि एआई ने तो सिंगर्स की नौकरी बिल्कुल खा ली है। आजकल तो एड्स भी सारे एआई से बन रहे हैं, तो देखें भाई वो इसीलिए कहते ना एआई सीख ले, आगे बहुत आपको काम आएगा। तो एआई के गानों से जरा बात याद आ गई कि एआई के गाने जो आजकल इतने अच्छे अच्छे बन रहे हैं, तो एक ऐसा एआई का गाना आपने मुझे जरा बताना है जो कि आजकल आप सुन रहे हैं, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको यकीन नहीं आता कि ये एआई का बना हुआ गाना है, क्योंकि बहुत गाने ऐसे आ चुके हैं मार्केट में तो मैं सुनकर भाई मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि ये एआई का गाना बना हुआ है, इतना अच्छा इतना सुरीला कि सुनकर बस मजा ही आ जाता है। तो जल्दी से मुझे बताएं कोई ऐसा गाना जो आपको लगता है कि ये तो भाई एआई का नहीं, लेकिन हाँ वो एआई का होता है। तो भाई ये आजकल सिंगर्स की नौकरियां भी जरा खतरे में आगे पता नहीं और क्या क्या होने वाला है। इसीलिए भाई पढ़े लिखे आईएएस वाईएएस बने, अपना फ्यूचर जो है ना वो सिक्योर कर ले। और इसके अलावा अब्दुल्ला अली हमारे साथ कहते हैं अखरी चौधकी से अली गुलाब शर और अब्दुल्ला शर, बाजी आपका प्रोग्राम अच्छा है, थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, आपको वेलकम कहते हैं। आपका ये जो सिटी है ना ये मुझे सही से नहीं इसका नाम आ रहा, मैंने सुना ही पहली मरतबा, तो आपको वेलकम कहते हैं। उनका अलावा दर्दे दिल कहती हैं हाँ अमेजिंग सॉन्ग एंजॉय करें, और दर्दे दिल कहती हैं कि और अलीजा शो सुन रही है टॉपिक अलीजा ज्यादा, हाँ सही सही बोलती है, हाँ सही सही ओके हजार भाई कहते हैं जी जी जी हाँ जी टॉपिक में ज्यादा बोलता हूँ और कभी कभी ओ माय गॉड भी बोलता हूँ, ओ माय गॉड ये जो भी लोग बोलते हैं मुझे बड़ी हंसी आती है।

और हजार रुपए कहते हैं रियली एआई मेरा काम भी खा जाएगा, लग तो ऐसा रहा है। आजकल देखे लोग ज्यादा कंटेंट जो है ना वो ऐसा बना रहे हैं कि मुझे ऐसा होता ना, पहले मैं सोचती थी कि लोग इतनी मेहनत करे वीडियो बनाने में, एक वीडियो बनाने में इतना मुश्किल काम होता था, लोग रिकॉर्डिंग करते थे, अपनी वीडियो बनाते थे, ऑडियो देते थे और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर एडिट करते थे। लेकिन अब ऐसा है कि भाई एआई को दे दें वो सारा काम आपको करके दे देगा। और अब तो ऐसा है कि शॉर्ट्स भी आपने देखे होंगे बस सिर्फ एआई के ही चल रहे हैं, मैं बैगन उड़े, मैं गोभी उड़े, सारा बस यही चल रहा है, वीड मेरा पूरा बड़ा हुआ होता है। तो ये सुन सुन कर देख देख कर ऐसा लग रहा है कि भाई एआई ने इतना जो है ना वो हमारे लोगों के जहनों पर सवार हो चुका है कि बस उठते बैठते हमारे घर में तो यही चलता है, मैं एआई उड़े, मैं गोभी उड़े, मैं बैंगन उड़े और ये पता नहीं कौन कौन सब्जियों के ये शॉर्ट्स बनाकर जो है ना ये बस चल रहे हैं आजकल। तो ये चीज देखकर अजीब ही लगता है और हम सोचते हैं भाई ये दुनिया कहाँ जा रही है। तो अपना टाइम जो है ना वो ऐसी चीजों में जरा मत ही वेस्ट किया करें, बस आप ऐसे ही रील्स देखते हैं बैठकर। मैंने तो ऐसे सारे कंटेंट को जो है ना वो हाइड ही कर दिया है, मेरे पास इस तरह की कोई रील नहीं आती, लेकिन मेरे घर वाले जो है ना वो सारा दिन देखते रहते हैं। और ये वही बात आ जाती है, जो लोग जितना कंटेंट देखेंगे तो उनको वैसा ही जो है ना वो ज्यादा कंटेंट बनाएंगे लोग, यानी कि उनको व्यूज मिलते हैं तो वो ज्यादा बनाएंगे। अगर इस तरह का कंटेंट ज्यादा लोग देखेंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा बनेगा। तो ऐसा है कि आप देखना जरा बंद करें ताकि लोगों को ये चीज समझ आ जाए कि भाई कौन सा कंटेंट बनाना है और कौन सा नहीं बनाना। भाई हाँ, क्या पता एआई आरजेबी बन जाए। अब तो कुछ भी हो सकता है, मैं कहती हूँ कुछ भी हो सकता है।

ये बात बिल्कुल मुझे लगती है कि सिंगर्स का तो भाई गयो, सिंगर्स तो गयो, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छे आए के गाने बन रहे ना, मैं सुनकर एक दो गाने में आपको सुनाऊंगी प्रोग्राम में, आप सुनिएगा, आपको मजे आएंगे, आप बोलेंगे भाई ये AI जो गानो कांगे लगन हो एक हो ना, पर हाँ बिल्कुल AI जो गानो हो तो। अच्छा किशोर भाई कहते आओ मीम लवर आई हाँ जेको मीम पसंद अच्छे थो हूँ अप्लाई कर दो आया सेम सेम। अब्दुल्ला भाई कहते हैं बाजी मुझे एक अर्ज नई नई इंडियन गाने भाई अब नहीं लगाते तो माजरत कर देते हैं। सादिया कहती है आप ही पांच उंगलियां बराबर नहीं है, आप मुझ पर यकीन कर सकती हैं। भाई मैं किसी के ऊपर यकीन नहीं करती और मुझे पता है पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, हाथ पूरा आप बंद कर देना तो पांच उंगलियां बराबर हो जाएंगी। तो मैं इस चीज के ऊपर बिलीव करती हूँ, पांच उंगलियां जो

0: भाई मैं होशियार हूँ, मैंने बंदोबस्त कर लिया हुआ है अपना, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप अपना सोचिए जरा। वैसे वो वाली बात आ जाती है ना कि मैं लेडीज हूँ, मुझे फ्यूचर की ज्यादा टेंशन नहीं करनी चाहिए। समझ गए होंगे, तो लेडीज लोगों को ज्यादा फ्यूचर की टेंशन नहीं करनी चाहिए, समझ रहे हैं। प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, ऐसी हमारी बातें होंगी जी प्रोग्राम के अंदर, और आप लोगों के साथ।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: कोर्ट आए मुआशी कॉरिडोर में तब्दील कयो वेंदो, केटी बंदर जी तरक्की सां कराची पोर्ट ते दबाव घटि थींदो, रोज़गार जा नवां मौक़ा पैदा थींदा ऐं सनअतूं तरक़ी कंदियूं।

अवण वज़ीर आज़म नून लीग जी सदर नवाज शरीफ जी सदारत हेठ पार्टी अगवाणन जो मरी में अहम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक। आज़ाद कश्मीर में चूंडन में कामयाबी बाद हुकूमत साजी समेत मुख्तलिफ़ मामलन ते गौर। ज़रियन जो चवण आए तो इजलास दौरान मुल्क की मुआशी ए सियासी सूरत हाल जो भी जायज़ो वरतो वियो।

0: after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: ट्रंप जो आपने हरमुज के जल्द अमेरिकी लाइक करार देने जो ऐलान न्यूयॉर्क में तकरीब के खिताब कहते अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो ईरान से मुआशी दबाव विझी जंग खत्म करने मजबूर कंदी जल्द आबना हरमुज के अमेरिकी इलाक करार देने जो भी ऐलान कंदस व्हाइट हाउस आबना हरमुज बाबत सदर ट्रंप के बयान के मजाक करार दई छो अमेरिका सां गालियुनि जी बहाली जो फैसलो नाहे कयो पैगामन जी डे वट गालियुं नाहिन हूंदियूं ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास इराकची चयो आहे त इस्लामाबाद मुफ़ाहमत नामे में जंग बंदी न पर जंग जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि थी हुई जंहिंजी अमेरिका भञकड़ी कई अमेरिका सां राब्तनि लाइ पहिरीं वारा राब्ता हाणे मुयसर न रहिया आहिनि तेहरान अमेरिका सां राब्तनि लाइ वक़्ती रस्तो तयारु करे रहियो आहे जेको बाद में मुस्तक़िल रस्तो बि थी सघे थो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पारां अॻोणे फ़ौजियुनि जे मान व्याजियाणो मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि जी साहरा ISPR मौजूदु फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर पारां ॾिनल आजियाणे में अॻोणे फ़ौजी सरबराहनि समेत वॾे अंग में रिटायर्ड आफ़ीसर ऐं जवान शरीक थिया फील्ड मार्शल मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि ते संदन वाखाण कई अॻोणनि फ़ौजियुनि पारां अस्करी क़यादत ते एतमाद जो इज़हार क़ौमी इतिहाद अमन ऐं ख़ुशहालीअ लाइ किरदारु जारी रखण वारे अज़म जो वर्जाउ NDMA चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां मुलाकात NDMA चेयरमैन पारां वज़ीर आज़म खे मौसमियाती तब्दीली जे हवाले सां ब्रीफिंग ॾिनी वई वज़ीर आज़म पारां NDMA खे सूबनि सां सहकार करण जी हिदायत शहबाज शरीफ चयो त मुतासिरनि खे सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि कराची जी अदालत में नौजवान वापारी मीर रज़ा केस जी ॿुधणी अदालत पारां जांच में सुस्तीअ ते ॻणती ज़ाहिर 24 अगस्त ताईं जांच मुकमिल करे रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत अदालत रिमार्क्स ॾींदे चयो त वालिद ख़ानदान ऐं शहरी परेशान आहिनि हिकु माण्हू जो क़तलु थियो आहे जांच करे हक़ीक़तूं साम्हूं आणियो अदालत मीर रज़ा जे भाईवार मोहम्मद अहमद जी अबूरी ज़मानत में 10 ॾींहनि जी वाद करे छॾी पुलिस सां जांच में सहकार करण जी हिदायत वकील जबरान नासिर चयो त मीर रज़ा जे क़ातिलनि जी गिरफ़्तारी चाहियूं था गुड्स ट्रांसपोर्टर जी मुलगीर हड़ताल 8 ॾींहं बि जारी कराची पोर्ट कंटेनर सां भरिजी वई मुल्क में सामान जी फरहमी मुतासिर थियण लॻी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मौजूदु रोज़ानो लॻभॻि 10,000 कंटेनर बंदरगाहनि मां निकिरंदा आहिनि पर हड़ताल सबबि रुकिजी विया आहिनि हड़ताल सबबि मुल्की मैशियत खे 50 अरब खां वधीक जो नुक़सान थियो आहे शादी जे बहाने पाकिस्तान घुराए क़ैद करण जी शिकायत ते इंडोनेशियन नारी हैदराबाद मां बाज़ियाब इंडोनेशिया जी नारी जी शिकायत ते वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जी कार्रवाई ग्रीन मैसेज खे बाज़ियाब करायो कोर्ट जे हुकुम ते पुलिस कार्रवाई करे नारी खे बाज़ियाब करायो ॾखण में सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ सिंधी अदबी संगत जी रैली अदीबनि शाइरनि सियासी समाजी धुरियुनि ऐं सिविल सोसाइटी पारां रैली कढी धरणो वियो अॻवाणनि चयो त सिंध जो विरहाङो कंहिं बि सूरत में क़बूल नाहे जिदोजहद जारी रहंदी हुकुमरान सिंध खे विरहाइण वारियूं साज़िशूं बंदि कनि नसीराबाद जे मुख़्तलिफ़ शाखनि में ज़रई पाणी जी खोट बिजलीअ जी लोड शेडिंग ऐं बदमनी ख़िलाफ़ JUI जो एहतजाज काठिया मोहला खां रैली कढी अर्थर शाख जे पुल वटि धरणो आयो वियो अॻवाणनि चयो त ज़रई पाणीअ जी खोट सबबि आबादगार परेशान आहिनि शहरनि खां फुरू बि रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि आबादगारनि खे पाणी ॾेई अमुन बहाल करायो वञे बलूचिस्तान जे शहर ओस्ता मोहम्मद में आबादगारनि जो पाणीअ खोट ख़िलाफ़ एहतजाज आपाशी आफ़ी सालो धरणो हिनरो माइनर जे आबादगारनि पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज करे धरणो हुयो आबादगारनि चयो आहे त शाखनि में पाणीअ खोट सबबि फसल सुकी रहिया आहिनि पाणी फराहम करे ज़राइत ऐं ज़िंदगियूं बचायूं वञनि सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में औरत समेत टिन जन जा लाश है। छाछरो वेझो घर के कमरे में औरत कविता मेघवाड़ जो फाहो लगल लाश मिलो है। सखर के सिटी पॉइंट बाईपास वटा खीरथर कैनाल में नामालूम शख्स जो लाश हथायो है, सुणप नी सी है। सखर बैराज में बेक जणे जो लाश मिलो है, सुणप नी सी है। सखर में गुजरे डी हादसे में फौत थे नींगर जो लाश रखी एहतजाज। नींगर हसन अली के वारसन प्रेस क्लब आडो लाश रखी एहतजाज कयो। मुजाहरीन मौजू पुलिस हादसे के जिम्मेवारन के अजा तक गिरफ्तार ना कयो। जिम्मेवार गिरफ्तार न थे। एहतजाज जो सिलसिलो जारी रहंदो।

0: 1.5 करोड़ रुपयनि जे सोन चोरी थियण वारे वाके जो ड्रॉप सीन चोर फरियादी ऐं संदसि सालो निकितो फरियादी दुकानदार गिरफ़्तार SSP दादू चयो आहे त CCTV ऐं जियो फेंसिंग ज़रिए जांच दौरान सोन चोरी जो ड्रामो पधरो थियो सोन चोरी करे खणी वियल दुकानदार जो सालो अर्शद जो फरार थी वियो आहे वधीक जांच जारी आहे इंडोनेशिया के साहिली इलाके में जिलजिलो शिदत 7.7 रिकॉर्ड जिलजिले सबब केतरी ही इमारतों पट 20 जणा फौत केतरा ही जख्मी इंडोनेशिया के साहिल वेझो आयल जिलजिले सबब रहवासी घर का बाहर निकरी आया किरियल इमारतन के मलबे में दबियल मानुन के बाहर कढ़ने ला रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है
1: सोलर बैटरी से डायरेक्ट
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादे खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात
4: अक्सर मान जो सवाल हों असा के सही पोलियो जी वैक्सीन 10 सालन ताई छोती दिनी वने तो जको असा वट जेके बार आन अक्सर कमजोर आन उन में इम्यूनिटी तमाम घट हुंदी आ हाई रिस्क हुंदा आन उन के अलावा असा जी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंजे करे तहां के वैक्सीन जे लाए उम्र जी हद कोने कैम जगह ते वैक्सीन कैम उम्र ते पोलियो लगी सके तो कैम उम्र ते वैक्सीन करे सके पर रेशियो वधी कदन साल के घटा तंजे करे असा जो रिक्वेस्ट आए सब जी के बूस्टर डोज लगराए
5: हो तो आवाज भी सिंध की है GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: हम बहने याशी की जिंदगी गुजारेंगे।
1: वो भी शो किया था। हाँ ये भी एक चीज पूरी हो गई कि मैंने फ्राइडे वाले दिन भी शो किया। सही है जी, सब कुछ कर लिया, फ्राइडे वाले दिन भी शो कर लिया। मकसूद मन्हा कहते हैं, चलती का नाम मस्ती शो में वेलकम एंड खुश आमदीद आदाब, आपको भी आदाब अर्ज है जी। और मकसूद मन्हा कहते हैं, अच्छा चलती का नाम मस्ती में पता नहीं क्या कह रहे हैं। उनके अलावा रसूलाबाद का आबिद सिंह शंबानी है, वालेकुम अस्सलाम अदी मुंजो सकिया कलाम आहे खां पोई तवां जो मैसेज मिसिंग पार्ट आहे। और उनका अलावा मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर भाई हमारे साथ कहते हैं, जबरदस्त ये शो और सॉन्ग सुनाए हुमेरा चन्ना का। हुमेरा चन्ना का गाना आपको सुनाने की फुल कोशिश की जाएगी। और रसूलाबाद से आबिद सिंह शंबानी भाई है कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम अदी मुंजो तकिया कलाम नाहे बाकी अक्सर चवंदो आहियां जेको आ सो वो पंहिंजो आ जेको आ सो वो पंहिंजो आयो जा पहिरां कुझु टाइम पहिरां मूंखे आदत पई मार घड़ी खे चवंदा जेको आसो तेको आहे तेको आसो जेको आहे जेको आसो तेको आहे तेको आसो जेको आहे इहो मां शायदि कंहिंखां ॿुधो हुयो। हुनजी आदत हूंदी जेको आसो जेको आसो, पोइ मां हुन जो मज़ाक उॾाइण लाइ हुनखे चवंदमि जेको आसो तेको आहे तेको आसो जेको आहे चई चई चई आदत पइजी वई मुंहिंजी बि। ईअं थींदो आहे तॾहिं चवंदा आहिनि कंहिंजो मज़ाक न उॾाइजे। और रसूलाबाद खां आबिद शंबानी भाई तव्हांजो मोहबतूं आहिनि। ऐं उन खां अलावा शमन जे गाने जी फरमाइश हुई त बाबा शमन जो गानो असां लिस्ट में रखी छॾियो आहे, बिल्कुलु असां ॿुधंदासीं। ये जी हमारे साथ दादू खां इमदाद जतोई, अब्दुल खालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई, किफायतुल्ला जतोई, फारूक हैदर जतोई, सॉन्ग हुमेरा चन्ना हाजिर हाजिर बुध रहा हूँ। वरियामली कहते हैं, सिदरा हम भी सुन रहे हैं आपका प्यारा शो एंड सलाम हो दिल से आपको एंड सॉन्ग भी बहुत अच्छे चलाती हैं आप, अपनी पसंद के लगाया करें। ठीक है।

वजह से आहे दुख जो गानों पर फीलिंग दादो भलो तो हो इन अहिड़े गाने ते केरु ॾुख कंदो बाबा. अच्छा हैप्पी फायजा हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम सिडो जानी, आप कैसी हैं? आपका शो माशाल्लाह सुपर डुपर और आप उससे भी ऊपर, हम भी आपके साथ साथ ही जाना. थैंक यू वेरी मच हैप्पी फायजा. और साइमा मीर हमारी साथी कहती, पल पल हिफाजत करना यारब उन फूलों जैसे लोगों की जिन्हें हम बड़े खुलूस से रोज याद करते हैं. वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद प्यारी.

वालेकुम अस्सलाम माय स्वीट आजी, आप कैसी हैं? मैं हैप्पी गर्ल हूँ, तबीयत कैसी है? वेलकम टू शो स्वीटी, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसी हैं? और मकसूद कहते हैं जवाब में जब किसी से बात करता हूँ तो बोलता हूँ ओ हेलो भाऊ, और जब किसी से किसी की बात सुनता हूँ तो बोलता हूँ कसम थई नानी जो सही बुधा।

क्या देख रहा हूँ, बस कभी कभी आंखों पर यकीन नहीं आता। हाँ जी निदा, बिल्कुल सब देखा है। किशोर भाई कहते लगे तो मुझो भी AI वर्जन अच्छी वयो आ कल खां फेल कया पयो। अच्छा मतलब कहना क्या चाहते हो? सनाउला फुल पोटो हमारे साथ मौजूद है। हाय जी हाय, दर्द दिल में बिल्कुल अलर्ट हूं जी, ता होशारी पकड़ियो। ये गल ना था मता समझो। अच्छा हिदायतुल्ला कहते ही साओ वगो यारो मुखे आजादी पर आयो है। सफा सही था चवला।

शेयर करना. हेलो हेलो हेलो हेलो. बदली कहती है, उस दिन पप्पो प्यार से बात कर रही थी, फिर मुझे लगा ये एआई तो नहीं ना, हो भी सकता है. अखलाक बलोच भाई ये मेरे सुन रहे, कहते नाइस शो, थैंक यू थैंक यू. अच्छा सादी तमाम गाने जी फरमाइश कई, मैं कोशिश करनी तानी पसंद जो गाना वाला सी मोहम्मद समान भा सा की बुद्धि पयो. वेलकम जी अखलाक भा, तो वहां टॉपिक जो जवाब दिनो है यो भी सही आ जाए, समझ में नहीं चाहिए उन्हें की चवंदा कयो. बाकी जगह समझ में ईदो ना, उन्हें हता ता के खुद की मिलंदी. जी बी गाल ना दाडू भलो गानो जी को सा बुदो से ही वारो सॉन्ग भी सांजी लिस्ट में आ है, सो हिने के भी बुदना से इन जी फरमाशा सा के सांजी उदास लड़की कहिया है.

हिन गाने खे रात जो बुधण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे. सभु सूर याद अची वेंदा आहिनि. बिल्कुल बहुत खूबसूरत गाना. अच्छा ये हमारे साथ एमी आ गया मैं आपके शो में. सलाम एंड गुड आफ्टरनून. कैफ हालो के या हबीबी. मोबाइल चार्ज नहीं था फिर भी आपके शो में आने के लिए किसी और का मोबाइल उठा के आ गया ए एम हमारे साथ. अली मुर्तजा साहब को वेलकम कहा जाता है. थैंक यू थैंक यू. कहते नाम अच्छा कहते हम लेट क्या हुए नाम ही बदल डाले. भाई ॾिसो बाबा ॾिसो तॾहिं चवंदा आहिनि डेली ईंदा कयो जी तव्हां सफ़ा अपडेट रहो हर चीज़ खां.

अरे सबर क्यों मां तांखे इलाही सारा हाने जेको इंदो ना लास्ट लिंक इंदो ना में मां तांखे इलाही सारा एआई जा गाना बुझराई ना उई ता बुद्ध जो तांखे मतलब वडो मजो अची वेंदो ता एकरी बी दुनिया में गुम थी वेंदा सो बियो हां जेको लिंक इंदो ना में सब सा एआई वाला गाना बुधना सी सही आ अलग अलग अजीब अजीब हरकतों करे में मुखे डाडो मजो इंदो है

बाबा ख्याल कजो ख्याल कजो। अच्छा मुझे प्यारो अदो अदो कहते हैं कि यूं तो तुझ पर कोई अख्तियार नहीं मेरा, यूं तो तुझ पर ना कोई अख्तियार नहीं मेरा, मगर खुदा की कसम जहर लगते हैं मुझे तेरे आसपास भटकते लोग। अली भटकती तो आत्माएं हैं। चलो यो भी सही है। टाइम थी वहां शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो अयुना खां पूरी जल्दी वापसी तवानी मोटी जुदा तवा करी ने मंजो इते बैठा हो जो मा ओ ही वनी ओ ही मोटा थी। सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88 नेटवर्क सुनती रहिए प्रोग्राम चलती का नाम मस्ती पूरे 3 बजे तक।

0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम,
0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान. GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
2: तमाम भी पैंजो ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए ते ठाण चाहो था जिते हो जे तहफुस जदीद सहूलतों आई मंजूर थेल सिक्योरिटी
0: तपोई भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
2: सखर शिकारपुर रोड ते
0: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल सामू
2: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थेल
0: एक शानदार आई काबिले एतमाद रिहायशी मनसूबो
2: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
0: रिहायशी प्लॉट्स 80-120-150 गजा
2: आई कारोबारी मौके Like commercial plots, 50 acres and 600 acres.
0: Hitte tamam ki milan thiyo jadid sahulaton.
2: Saaf mitho pani,
0: bijli, gas,
2: 24 kalaka security.
0: Masjid, park, school, boundary wall, ain sabka vadi gal. Hi mansubo sports complex ji bejo ahe.
2: Jeko rehaish ain sidak kari bini lai behtareen mauke banaye tho.
0: Aji penji plot ji booking karayo.
2: Fauri kabzo ain fauri registry.
0: Contact
2: 03-00-9317.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
4: अक्सर वालदैन ही सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए तेंदो आसान जवाब यो आ ही बार भी असां वट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आए बारन जी सेहत जो ख्याल रखण लाजमी है जरूरी आए असां जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुवते मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आए उनन के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसा है कि भाई हाल लग रहा है कि यहाँ पर ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज नहीं होनी चाहिए, जिस वजह से लग रहा है कि ये गाना जो है ना AI सॉन्ग है, वरना तो कोई यकीन नहीं कर सकता कि क्या ये गाना AI है। बिल्कुल सुन ले भाई, देख ले कितनी AI ने तरक्की कर ली है। अगर इसे तव्हां जो कुछ मैसेज आहिनि, मैसेज पढ़ी वठूं था, उन खां पोइ तसली सां वेही तव्हांखे भला भला AI जा गाना बि ॿुधरायूं था। अच्छा सो हीअ असां सां गॾु मौजूद आहे, अस्सलाम वालेकुम फुलजी, स्टेशन लग नूरपुर खां फौजी पठान खान खोसो, असांखे गानो ॿुधरायो, फोटो जरदारी बोल आहिनि, ठीक आहे भाउ तव्हांजो मोहबत आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया। इरम कहती है मैं मीम लवर हूँ, चले जी ठीक है अच्छी बात है। ये मौजूद है हक मौजूद, मुलाद इस्लाम मदद, बदीन खान, डॉक्टर हसीना सुमरो कहती है प्यारी असांखे गानो ॿुधायो, फरजाना परवीन बोल आहिनि मुझे हथ जो रुमाल बे कंहिंखे न ॾिज आहे, हाज़िर हाज़िर हिन प्रोग्राम में न त 5 बजे वारे प्रोग्राम में तव्हांजी पसंदि जो गानो हलाईंदासीं। और सैमा मीर कहती अरे वरी बिल्कुल यही गाला। ओके जी ओके, कोई बात नहीं, वैसे आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ है काफी दिनों के बाद, वैसे आप हमारे प्रोग्राम में शामिल रही हैं। सायमा मीर कहती है हाय फोजिया बतूल दा गाना अमेजिंग, मस्त मस्त, और सबा एंड सिद्रा टॉपिक सही सही, अल्लाह खैर करेगा, चलिए नहीं बहुत बढ़िया। चाचा खालिद कहते लगे तो अजो मुझो गानो कोन प्ले, अजो तमाम मतलब किस्मत असा गाने जी फरमाइश कई वो गानो वरी AI जो हो सो वो भी मुझ लिस्ट में लगाए छो। और ये हमारे साथ ही आरजी मेरे पास

अच्छा नाम तो आपने लिखा नहीं अपना, पता नहीं कौन है, नाम लिखा करे पैनल पर जब भी आप मुझे मैसेज किया करें तो इरम कहती है आप ही जवाब है, अल्लाह तौबा तौबा। चलें जी सही बात है। मीर बालाज ब्रोई हमारे साथ मौजूद है, आपको भी वेलकम करते। ये जो गाना अभी लगा है ना, ये गाना मेरा आजकल बहुत फेवरेट बन चुका है। ये गाना जरा सुनिएगा, ये AI का सॉन्ग है, आपको यकीन ही नहीं आएगा।

0: आजकल इस गाने के सुरूर में मैं खो चुकी हूँ बहुत ज्यादा, और कितना खूबसूरत गाना था, सुनकर बहुत ही अच्छा लगा. उनके अलावा बिल्कुल जी तमाशा से गुड मौजूद आयो ये मौजूद हैं डॉक्टर हसीना सुमरो. डॉक्टर हसीना सुमरो को वेलकम कहा जाता है आप हमारे साथ, और संजय जी पाल भाई हमारे साथ है. और अली मुर्तजा कहते हैं
1: तेरा नाम लेती हूँ
0: प्ले राहत सॉन्ग इन वॉइस ऑफ सिडू. क्या मतलब कुछ भी. और सईदा बुखारी हमारे साथ हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा, क्या हाल है आपके. मैं ठीक हूँ, आपने बहुत अच्छी सी दुआएं दे दी हैं मुझे, सो थैंक यू सो मच सब दुआओं के लिए. और मोहम्मद जमान कहते हैं नेटवर्क का कोई हल बताएं, सुकून से शो नहीं सुनने देते, जो ए बताई थी ना वो डाउनलोड कर ले. दर्द दिल कहती है और अगर कोई सीरियस बात हो तो बोलती हूँ न कर. सही है. सईदा बुखारी कहती है ये बेहतर है कि इंसान ना खुश हो मगर हकीकत के बदतरीन सूरत से वाकिफ हो, यह हकीकत है. निदली कहती है रात को सर्दी दिन को गर्मी ये सब क्या है पूजा, बस मत पूछे पूजा से, पूजा खुद सताए हुए. और संजय जयपाल भाई आपका बहुत शुक्रिया, शमन का गाना हमने ऑलरेडी सुन लिया है.

0: ठीक है।
1: दातुला कहती आज हमारे गाने भी AI खा गए। बिल्कुल ऐसा है। चाहता है सभी अगर लौट आए तू एक बार में। भाई तभी कह रही हूँ, सिंगर्स तो गयो, सिंगर्स तो गयो ठाकुर। अच्छा हुआ मैं सिंगर नहीं बनी। दर्द दिल कह दिए क्या ये तो कमाल हो गया, इतने अच्छे गाने मैं बोल रही हूँ ना आजकल, मैं सुनी ऐसे गा रही हूँ।

बस बैठे बैठे हमें पूजा याद आ गई. पूजा को भी याद करने का ऐसे दिल कर रहा था. और अच्छा अब्दुल गफार भाई, वालेकुम अस्सलाम, आप भी सलामत रहें, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ साथ. हजार भाई कहते कि ये सच है कि जागती आंखों में तेरे ख्वाब आते हैं, प्यार मोहब्बत और इश्क कब किसी को रास आते हैं. वाह

अच्छा सादिया दीदी, आप ये आज आपका मूड माशाल्लाह जबरदस्त है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर के निखार सब सूर खत्म थी वेंदा, डॉक्टर वटी इलाज ही कोनी असांजे सूर सनाला पल वोटो भाई के सदा क्या खाती हो, इतना अच्छा बोलती हो। बस वही खाती हूँ जो आप सब खाते हैं। और ऐसन कहते असा भी बुद्धू था शो मैडम मुस्कान जाए उदा कसम दे। और ये हमारे प्रोग्राम का लास्ट ट्रेक हमने लगा लिया है जी, जो चाचा ने फरमाइश कर दिया था। भाई चाचू इन सियाणो था

थे सज्जन भाई माशी गोट जान मोहम्मद माशी मोरो का तमाम संगे ज्वाइन कयो आए सो मोहब्बतु आइन भाउनजो और ये मौजूद है अस्सलाम वालेकुम ताहिरा लाड़काना खां आपी छाला तमाजो ताहिरा मसफा भलिया ता बताए की आयो और बदीन खां डॉक्टर हसीना सुमरो साहिबा नंदड़ी छोकरी मासूम छोकरी मैसेज पूरो पढ़ो हाजिर डॉक्टर साहिबा तमाजो मैसेज पूरो पढ़ना सी आई तमाजो गानो रही जिया तो वो असा 5 बजे वाले प्रोग्राम में हलाए वठना सी ठीक है तो थैंक यू सो मच ता सबनी सोनन प्यारन मिठड़न मानन जो ये मोहब्बतू आइन बाबा जगह पंध कराइन थी।

0: तो चले इसी के साथ आप लोगों से लेते इजाजत वरी तवा से मुलाकात मुझे थे पे बाबा पंजे बजे वाले प्रोग्राम में सो पंजे बजे वाले प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करना इतने तवा का इजाजत रखो इतने का गलती थी हुए तो माजरत जिनका फीडबैक रहती हुआ जो को गानड़ो शानड़ो रहती हुए तो सभी का माजरत मोगलानी ना ही बाबू सिंह सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर
1: मोरू नौ शहरों मीरपुर खास लाड़काना सखर गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज जीए FM 88 नेटवर्क अब आप सुनेंगे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई

0: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में औरत समेत टिनि ॼणनि जा लाश हथ छाछरो वेझो घर जे कमरे मां औरत कविता मेघवाड़ जो फाहो लॻल लाश मिलियो आहे। सखर जे सिटी पॉइंट बाईपास वटां खेदर केनाल मां नामालूम शख़्स जो लाश हथायो आहे। सुञाणप न थी सघी आहे। सखर बैराज मां बि हिकु ॼणे जो लाश मिलियो आहे। सुञाणप न थी सघी आहे। ॾहिरकीअ में शहीद साफ़ी मोहम्मद बचल गुंजो जे क़तल जो जरगे ज़रिए निबेरो ॾोहो साबित थियण ते इल्ज़ाम हेठि आयल धरती ॾोहो साबित 1,20,00,000 रुपया ॾढ लाॻू राउती में शहीद साफ़ी मोहम्मद बचल गुंजो जे क़तल जो निबेरो मियां रफ़ीक़ अहमद जे सरपंची हेठि थियो। मोहम्मद बचल गुंजो खे अगस्त 2024 में राउती थाणे जी हद में क़तल कयो वियो हो। दादू में 1.5 करोड़ रुपयनि जे सोन चोरी थियण वारे वाके जो ड्रॉप सीन चोर फरियादी ऐं संदसि सालो निकितो। फरियादी दुकानदार गिरफ़्तार। SSP दादू चयो आहे त CCTV ऐं जियोफेंसिंग ज़रिए जांच दौरान सोन चोरी जो ड्रामो पधरो थियो। सोन चोरी करे खणी वियल दुकानदार जो सालो अर्शद जोयो फरार थी वियो। वधीक जांच जारी आहे। इंडोनेशिया जे साहिली इलाइक़े में ज़िलज़िलो शिदत 7.7 रिकॉर्ड। ज़िलज़िले सबब केतिरियूं ई इमारतूं पट 20 ॼणा फ़ौत केतिरा ई ज़ख़्मी। इंडोनेशियाई साहिल वेझो आयल ज़िलज़िले सबब रहवासी घरनि खां ॿाहिरि निकिरी आया। किरियल इमारतनि जे मलबे में दॿियल माण्हुनि खे ॿाहिरि कढण लाइ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी आहे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
3: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
5: सिंध के माथे का झूमर
6: GFM 88 नेटवर्क।
5: सिंध की आवाज़।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हों तो असा बार बार पांजे बारन के पोलियो का कतरा छो प्यारियों जो असा बार पेरी पोलियो का कतरा पी चुको है। मुझो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो का कतरा पीण से बार की इम्यूनिटी जो बेहतर थिए थी। हाँ जो कैंपेन अचे थी जैमें असा जो पोलियो जो डींदी उनमें का भी सुई इस्तेमाल न थी बगैर कें दर्द के वैक्सीन जे बार के करा असो पाकिस्तान इन पोलियो जड़े मुझी मर्द में जो महफूज रहन।
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है और वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: GFM 88
3: नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज़।

0: that after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: जो आपने हरमस के जल्द अमेरिकी इलाकों करार देने जो ऐलान न्यूयॉर्क में तकरीब की किताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चवा ते ईरान ते मुआशी दबाव विझी जंग खत्म करने ते मजबूर कंदासी जल्द आपने हरमस के अमेरिकी इलाकों करार देने जो ऐलान कंदस व्हाइट हाउस आपने हरमस बाबत सदर ट्रंप के बयान के मजाक करार दे छो अमेरिका सां गालिन जी बहाली जो फैसलो नाहे कयो पैगामन जी डेवट गालियो नाहे हुंदियो ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची चयो आहे त इस्लामाबाद मुफाहमतनामे में जंग बंदी न पर जंग जी खात्मे जी गाल थी हुई जंहिं जी अमेरिका भंगड़ी कई आहे अमेरिका सां राब्तनि लाइ पहिरें वारा राब्ता हाणे मुयसरु न रहिया आहिनि तेहरान अमेरिका सां राब्तनि लाइ वक़्ती रस्तो तयारु करे रहियो आहे जेको बाद में मुस्तक़िल रस्तो बि थी सघे थो वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि सीरपकारी बाबति इजलास केटी बंदर मनसूबे ते गौर केटी बंदर जी तरक़ीअ लाइ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत जाम मॉडल तयारु करण जी हिदायत मुराद शाह चयो आहे त केटी बंदर मनसूबो रुगो सिंध न पर मुल्की तरक़ीअ लाइ अहम आहे केटी बंदर खे तवानाई जे गेट वे तौरु तरक़ी ॾिनी वेंदी केटी बंदर मनसूबो तयारु थींदे ई मुल्की ऐं परदेही सीड़पकारनि जो वॾो अंग हिते सीड़पकारी लाइ रुख कंदो केटी बंदर खे जदीद डीप सी पोर्ट ऐं मुआशी कॉरिडोर में तब्दील कयो वेंदो केटी बंदर जी तरक़ीअ सां कराची पोर्ट ते दॿाउ घटि थींदो रोज़गार जा नवां मौक़ा पैदा थींदा ऐं सनअतूं तरक़ी कंदियूं अॻूणे वज़ीर आज़म नून लीग जे सदर नवाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि पार्टी अॻवाननि जो मरी में अहम इजलास वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ बि शरीक़ आज़ाद कश्मीर में चूंडनि में कामयाबी बाद हुकूमत साज़ी समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते गौर ज़रियनि जो चवणु आहे त इजलास दौरान मुल्क जी मुआशी ऐं सियासी सूरतहाल जो बि जाइज़ो वरितो वियो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पारां अॻूणनि फ़ौजियुनि जे मान में आजियाणो मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि जी सहारा एस पी आर मौजूदु फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर पारां ॾिनल आजियाणे में अॻूणे फ़ौजी सरबराहन समेत वॾे अंग में रिटायर्ड आफ़िसर ऐं जवान शरीक थिया फील्ड मार्शल मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि ते संदन वाखाण कई अॻूणनि फ़ौजियुनि पारां बे अस्करी क़यादत ते एतमाद जो इज़हार क़ौमी इतिहाद अमुन ऐं ख़ुशहालीअ लाइ किरदारु जारी रखण वारे अज़म जो वर्जाउ NDMA चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक जी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात NDMA चेयरमैन पारां वज़ीर आज़म खे मौसमियाती तब्दीलीअ जे हवाले सां ब्रीफिंग वज़ीर आज़म पारां NDMA खे सूबनि सां सहकार करण जी हिदायत शहबाज़ शरीफ़ चयो त मुतासिरनि खे सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि कराची जी अदालत में नौजवान वापारी मीर रज़ा केस जी ॿुधणी अदालत पारां जांच में सुस्तीअ ते ॻणती ज़ाहिर 24 अगस्त ताईं जांच मुकमल करे रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत अदालत रिमार्क्स ॾींदे चयो त वालिद ख़ानदान ऐं शहरी परेशान आहिनि हिकु माण्हू जो क़तल थियो आहे जांच करे हक़ीक़तूं साम्हूं आणियो अदालत मीर रज़ा जे भाईवार मोहम्मद अहमद जी अबूरी ज़मानत में 10 ॾींहनि जी वाद करे छॾी पुलिस सां जांच में सहकार करण जी हिदायत वकील जबरान नासिर चयो त मीर रज़ा जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी चाहियूं था गुड्स ट्रांसपोर्टर जी मुलगीर हड़ताल 8 ॾींहं बि जारी कराची पोर्ट कंटेनर सां भरिजी वई मुल्क में सामान जी फरहमी मुतासिर थियण लॻी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मूजिबि रोज़ानो लॻभॻ 10,000 कंटेनर बंदरगाहनि मां निकिरंदा आहिनि पर हड़ताल सबबि रुकजी विया आहिनि हड़ताल सबबि मुल्की मैशियत खे 50 अरब खां वधीक जो नुक़सान थियो आहे शादी जे बहाने पाकिस्तान घुराए क़ैद करण जी शिकायत इंडोनेशियन नारी हैदराबाद मां बाज़ियाबु इंडोनेशिया जी नारी शिकायत ते वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जी कार्रवाई मर्लिन मैसेज खे बाज़ियाबु करायो कोर्ट जे हुकुम ते पुलिस कार्रवाई करे नारीअ खे बाज़ियाबु करायो चक में करोड़ा ऐं जतोई बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में फायरिंग वाटेड़ो क़तल हिकु ज़ख़्मी बचल भयो थाणे जी हद ॻोठ गुलाम नबी करोड़ो में ॿिन्ही धुरियुनि विच में फायरिंग दौरान वाटेड़ो आसिफ मार मारिजी वियो फायरिंग सबबि भर पासे जा रहवासी ख़ौफ़ में मुबतला इलाइक़े में छिकताण वधीक रतो छाण जो ख़दशो आहे सखर में जूनियर साइंस टीचर जे उम्मीदवारनि जो मुतालबनि जी मञता लाइ एतिजाह जूनियर साइंस टीचर उम्मीदवारनि जो पासिंग मार्कूं 55 मां घटाए 50 करण जो मुतालबो 50 खां 54 नंबर हासिल कंदड़ उम्मीदवारनि खे बि भर्ती वारे अमल में शामिल करण जी अपील नसीराबाद जे मुख़्तलिफ़ शाखनि में ज़रे पाणी जी खोट बिजली जी लोड शेडिंग बदमनी ख़िलाफ़ जे यू आई जो एहतजाज काटिया मोला खां रैली कढी अर्थर शाख जे पुल वटि धरणो हयो वियो अॻवाणनि चयो त ज़रे पाणीअ जी खोट सबबि आबादगार परेशान आहिनि शहरनि खां फुरूं बिरोज़ जो मामूल बणियल आहिनि आबादगारनि खे पाणी ॾेई अमुन बहाल करायो वञे सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में औरत समेत टिनि ॼणनि जा लाश हथ छाछरो वेझो घर जे कमरे मां औरत कविता मेघवाड़ जो फाहो लॻल लाश मिलियो आहे सखर जे सिटी पॉइंट बाईपास वटां खीरदर केनाल मां नामालूम शख़्स जो लाश हथायो आहे सुञाणप न थी सघी आहे सखर बैराज मां बि हिकु ॼणे जो लाश मिलियो आहे सुञाणप न थी सघी आहे ॾहिकीअ में शहीद साफ़ी मोहम्मद बचल गुंजो जे क़तल जो जरगे ज़रिए निबेरो ॾोहो साबित थियण ते इल्ज़ाम हेठि आयल धरती ॾोहो साबित 1,20,00,000 रुपया ॾढ लाॻू राउती में शहीद साफ़ी मोहम्मद बचल गुंजो जे क़तल जो निबेरो मियां रफ़ीक़ अहमद जे सरपंची हेठि थियो मोहम्मद बचल गुंजो खे August 2024 में राउती थाणे जी हद में क़तल कयो वियो हो दादू में 1.5 करोड़ रुपयनि जे सोन चोरी थियण वारे वाके जो ड्रॉप सीन चोर फरियादी ऐं संदसि सालो निकितो फरियादी दुकानदार गिरफ़्तार SSP दादू चयो आहे त CCTV ऐं जियोफेंसिंग ज़रिए जांच दौरान सोन चोरी जो ड्रामो पधरो थियो सोन चोरी करे खणी वियल दुकानदार जो सालो अर्शद जोयो फरार थी वियो वधीक जांच जारी आहे इंडोनेशिया जे साहिली इलाइक़े में ज़िलज़िलो शिदत 7.7 रिकॉर्ड ज़िलज़िले सबबि केतिरियूं ई इमारतूं पट 20 ॼणा फ़ौत केतिरा ई ज़ख़्मी इंडोनेशियाई साहिल वेझो आयल ज़िलज़िले सबबि रहवासी घरनि खां ॿाहिरि निकिरी आया किरियल इमारतनि जे मलबे में दॿियल माण्हुनि खे ॿाहिरि कढण लाइ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी आहे
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम
4: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: defeating Iran, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो अबले हुरमस के जल्द अमेरिकी इलाइको करार देण जो ऐलान न्यूयॉर्क में तकरीब के खिताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान ते मौशी दबाव विझी जंग खत्म करण ते मजबूर कंदासीं जल्द अबले हुरमस के अमेरिकी इलाइको करार देण जो भी ऐलान कंदुसि व्हाइट हाउस अबले हुरमस बाबति सदर ट्रंप जे बयान खे मज़ाक करार ॾेई छॾियो अमेरिका सां ॻाल्हियुनि जी बहालीअ जो फ़ैसिलो नाहे कयो पैगामनि जी ॾे वठि ॻाल्हियूं नाहिनि हूंदियूं ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राखची जो चवणु हो त इस्लामाबाद मफ़ाहमत नामे में जंग बंदी न पर जंग जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि थी हुई जंहिंजी अमेरिका भञकड़ी कई अमेरिका सां राब्तनि लाइ पहिरीं वारा राब्ता हाणे मुयसरु न रहिया आहिनि तहरान अमेरिका सां राब्तनि लाइ वक़्ती रस्तो तयारु करे रहियो आहे जेको बाद में मुस्तक़िल रस्तो बि थी सघे थो वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि सीड़पकारी बाबति इजलास के टी बंदर मनसूबे ते ग़ौर वीचार के टी बंदर जी तरक़ीअ लाइ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत जाम मॉडल तयारु करण जी बि हिदायत मुराद अली शाह चयो त के टी बंदर मनसूबो रुॻो सिंध न पर मुल्की तरक़ीअ लाइ अहम आहे के टी बंदर खे तवानाई जी गेट वे तौरु तरक़ी ॾिनी वेंदी के टी बंदर मनसूबो तयारु थींदे ई मुल्की ऐं परॾेही सीड़पकारनि जो वॾो अंगु हिते सीड़पकारी लाइ रुख कंदो के टी बंदर खे जदीद देव सी पोर्ट ऐं मुआशी कॉरिडोर में तब्दील कयो वेंदो केटी बंदर जी तरक़ीअ सां कराची पोर्ट ते दॿाउ घटि थींदो रोज़गार जा नवां मौक़ा पैदा थींदा ऐं सनअतूं तरक़ी कंदियूं अॻूणे वज़ीर आज़म नून लीग जे सदर नवाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि पार्टी अॻवाननि जो मरीअ में अहम इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं वज़ीर आला मरियम नवाज़ बि शरीक आज़ाद कश्मीर में चूंडुनि में कामयाबी बाद हुकूमत साज़ी समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ग़ौर वीचार ज़रियनि जो चवणु आहे त इजलास दौरान मुल्क जी मुआशी ऐं सियासी सूरतहाल जो बि जाइज़ो वरितो वियो आज़ाद कश्मीर जी पाबंदी मड़ियल एक्शन कमेटी ऐं भारतीय फ़ौज जो गठजोड़ बेनकाब कश्मीरनि पारां इंतशारी कमेटीअ जो बयानो रद्द करण बाद सहूलतकार भारतीय फ़ौज खुलियल तौर साम्हूं अची वई भारतीय फ़ौज पाकिस्तान मुख़ालिफ़ जज़्बा भड़काइण लाइ पर केरन सेक्टर में वॾनि स्क्रीन्स ते वीडियोज़ हलाए छॾियूं माहिरनि मूजिबि भारतीय फ़ौज वालरल कश्मीर में थींदड़ ज़ुल्म लिकाइण लाइ वीडियोज़ ज़रिए कूड़ी प्रोपेगेंडा करे रही आहे आज़ाद कश्मीर वासियुनि भारतीय प्रोपेगेंडा खे रद्द करे छॾियो आहे एनडीए में चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां मुलाक़ात एनडीए में चेयरमैन पारां वज़ीर आज़म खे मौसमियाती तब्दीलीअ जे हवाले सां ब्रीफिंग वज़ीर आज़म पारां एनडीए खे सूबनि सां सहकार करण जी हिदायत शहबाज शरीफ चयो त मुतासिरनि खे सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि कराचीअ जी अदालत में नौजवान वापारी मीर रज़ा केस जी ॿुधणी अदालत पारां जांच में सुस्ती ते ॻणिती ज़ाहिर 24 August ताईं जांच मुकमल करे रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत अदालत रिमार्क्स ॾींदे चयो त वालिद ख़ानदान ऐं शहरी परेशान आहिनि हिकु माण्हूअ जो क़तलु थियो आहे जांच करे हक़ीक़तूं साम्हूं आणियो अदालत मीर रज़ा जे भाईवार मोहम्मद अहमद जी अबूरी ज़मानत में 10 ॾींहनि जी वाधि करे छॾी पुलिस सां जांच में सहकार करण जी बि हिदायत वकील जिब्रान नासिर चयो त मीर रज़ा जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी चाहियूं था

गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जी मुल्कगीर हड़ताल 8 ॾींहं बिचारी कराची पोर्ट कंटेनर सां भरिजी वई। मुल्क में सामान जी फरामी बि मुतासिर थियण लॻी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मूजिबि रोज़ानो लॻभॻि 10,000 कंटेनर बंदरगाहनि मां निकिरंदा आहिनि, पर हड़ताल सबबि रुकिजी विया आहिनि। हड़ताल सबबि मुल्की मैशत खे 50 अरब खां वधीक जो नुक़सानु थियो आहे। शादी जे बहाने पाकिस्तान घुराए क़ैद करण जी शिकायत ते इंडोनेशियन नारी हैदराबाद मां बाज़याब। इंडोनेशिया जी नारी जी शिकायत ते वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जी कार्रवाई मर्लिन मैसेज खे बाज़याब करायो। कोर्ट जे हुकुम ते पुलिस कार्रवाई करे नारी खे बाज़याब करायो।

दादू में 1.5 करोड़ रुपयनि जे सोन चोरी थियण वारे वाके जो ड्रॉप सीन चोर फरियादी ऐं संदसि सालो निकितो। फरियादी दुकानदार गिरफ़्तार। SSP दादू चयो आहे त CCTV ऐं जियो फेंसिंग ज़रिए जांच दौरान सोन चोरीअ जो ड्रामो पधरो थियो। सोन चोरी करे खणी वियल दुकानदार जो सालो अर्शद जोयो फरार थी वियो आहे। वधीक जांच जारी आहे। इंडोनेशिया के साहली इलाके में जिलजिलो शिदत 7.7 रिकॉर्ड। जिलजिले सबब केतर ही इमारतों पट 20 जना फौत थी व्या, केतरा ही जख्मी। इंडोनेशियाई साहिल भरसा आयल जिलजिले सबब रवासी घर बाहर निकली आया। किरियल इमारतों के मलबे में दबियल मानून के भी बाहर कढ़ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्द मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
2: पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरण ऐं सकरण जो आवाज़
3: GFM 90.8।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो आहे असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सियासी मुखालफत दुश्मनी में तब्दील न थियण घुर्जे, कुछ शिकायतूं असां ताईं पहुतियूं जंहिं ते अफ़सोस आहे। उमेद न हुई त पीपल्स पार्टी तरफ़ां को शिकायत जो मौक़ो मिलंदो। शहबाज़ शरीफ़ जी महिनत रंग ॾेखारे रही आहे, मुल्क तरक़ी करे रहियो आहे। मरीअम में पार्टी इजलास खे ख़िताब कंदे नवाज़ शरीफ़ चयो त आज़ाद कश्मीर चूंडुनि जे ॿिनि मरहलनि में ई नून लीग कामयाबी माणी आहे। जहिड़ीअ तरह पंजाब तब्दील थी रहियो आहे, अहिड़ीअ तरह आज़ाद कश्मीर खे बि तब्दील थियणु घुर्जे। नून लीग डिलीवर न कयो त हुतां जो अवाम नाराज़ थींदो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिर्फ गुलाम की है भाषा।
1: जाने दिल जाने अत जाने दिल जाने अत जाने दिल जाने अत जाने कि दर्द पिछाड़ यार दर्द पिछाड़ मेरा दर्द।

0: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पीआरिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पीआरियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नेमत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लगाइणु लाज़मी आहे।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत। सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रर डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रर डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: कैसा महसूस हो रहा?
1: उसे खो के जिससे तुम बहुत प्यार करती हो।
2: माजी था ये मेरा।
0: माजी था लेकिन खूबसूरत था ना।
2: से वादा करो तुम्हारा मुझे डूबने नहीं दो।
3: डूबे आवे दिल, डूबे आवे।
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप
5: सियासी मुखालफत दुश्मनी में तब्दील न थियण घुर्जे। कुछ शिकायतूं असां ताईं पहुतियूं जंहिंते अफ़सोस आहे। उमेद न हुई त पीपल्स पार्टी तरफ़ां को शिकायत जो मौक़ो मिलंदो। शहबाज शरीफ जी महिनत रंग ॾेखारे रही आहे, मुल्क तरक़ी करे रहियो आहे। मरीअ में पार्टी इजलास खे ख़िताब कंदे नवाज़ शरीफ चयो त आज़ाद कश्मीर चूंडुनि जे ॿिनि मरहलनि में ई नून लीग कामयाबी माणी आहे। जहिड़ीअ तरह पंजाब तब्दील थी रहियो आहे, अहिड़ीअ तरह आज़ाद कश्मीर खे बि तब्दील थियणु घुर्जे। नून लीग डिलीवर न कयो त हुतां जो अवाम नाराज़ थींदो।

0: गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जी मुल्कगीर हड़ताल 8 ॾींहं जारी, कराची पोर्ट कंटेनर्स सां भरिजी वई, मुल्क में सामान जी फरहमी बि मुतासिर थियण लॻी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मूजिब रोज़ानो लॻभॻि 10,000 कंटेनर बंदरगाहनि मां निकिरंदा आहिनि, पर हड़ताल सबबु रुकिजी वञनि था। हड़ताल सबबु मुल्की मैशत खे 50 अरब खां वधीक जो नुक़सान थियो आहे। चक में कलोड़ा ऐं जतोई बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में फायरिंग वाटड़ू कतल समेत 2 ॼणा क़तल थी विया। कोट गुलाम नबी कलोड़ो में धुरनि विच में झेड़ो थियो। फायरिंग जे नतीजे में वाटड़ू आसिफ मार ऐं बशीर जतोई क़तल थी विया। फायरिंग सबबु भरपासे जा रहवासी ख़ौफ़ में मुबतला। सखर में जूनियर साइंस टीचर्स जी उमेदवारनि जो मुतालबनि जी मञता लाइ एहतजाज। जूनियर साइंस टीचर्स उमेदवारनि जो पासिंग मार्क्स 55 मां घटाए 50 करण जो मुतालबो। 50 खां 54 नंबर हासिल कंदड़ उमेदवारनि खे बि भर्ती वरी अमल में शामिल करण जी अपील। नसीराबाद जे मुख़्तलिफ़ शाखनि में ज़रई पाणी जी खोट, बिजली जी लोड शेडिंग ऐं बदमनी ख़िलाफ़ JUA जो एहतजाज। काठिया पाड़े खां रैली कढी आर्थर शाख जे पुल वटि धरणो हयो वियो। अॻवाणनि चयो त ज़रई पाणी जी खोट सबबु आबादगार परेशान आहिनि, शहरनि खां फुरूं बिरोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। आबादगारनि खे पाणी ॾेई अमन अमान बहाल करायो वञे। हैदराबाद मां 4 वरनि जो मासूम ॿारड़ो पुरसरार नमूने गुम, वारिस सख़्तु परेशान। पुराणी वहदत कॉलोनी वारे इलाइक़े मां 4 वरनि जो अहमद सोलंकी पुरसरार तौरु गुम थी वियो। NC दाख़िल। वारसनि चयो त ॿार जे गुम थियण खां पोइ इलाइक़े वासियुनि ऐं शहरनि तरफ़ां बि संदसि ॻोल्हा जारी आहे। ॾहिरकी में शहीद सहाफ़ी मोहम्मद बचल घुञो जे क़तल जो जर्गे ज़रिए निबेरो ॾोह साबित थियण ते इल्ज़ाम हेठि आयल धुर ते ॾंड मजमूई तौरु 1,20,00,000 रुपया ॾंड रखियो वियो। रावतीअ में शहीद सहाफ़ी मोहम्मद बचल घुञो जे क़तल जो निबेरो मियां रफ़ीक अहमद जी सरपंची हेठि थियो। मोहम्मद बचल घुञो खे August 2024 में रावती थाणे जे हदि में क़तल कयो वियो हो। छुल में बिजली जी लोड शेडिंग ऐं ट्रिपिंग ख़िलाफ़ जमात इस्लामी जी रैली, गेड स्टेशन आॾो धरणो। जमात इस्लामी जे सर ते मुख़्तलिफ़ सियासी पार्टियुनि एहतजाजी रैली कढी धरणो हुयो। अॻवाणु चयो त बिजली जी लोड शेडिंग सभु कारोबार ठुप थी वियो आहे। दादू में 1.5 करोड़ रुपियनि जे सोन चोरी थियण वारे वाक़े जो ड्रॉप सीन, चोर फिरियादी ऐं संदसि सालो निकितो, फिरियादी दुकानदार गिरफ़्तार। SSP दादू चयो आहे त CCTV ऐं जियो फेंसिंग ज़रिए जांच दौरान सोन चोरी जो ड्रामो पधरो थियो। सोन चोरी करे खणी वियल दुकानदार जो सालो अर्शद जो फरार थी वियो। वधीक जांच जारी आहे। इंडोनेशिया जे साहिली इलाइक़े में ज़िलज़िलो शिदत 7.7 रिकॉर्ड। ज़िलज़िले सबबु केतिरियूं इमारतूं पट, 20 ॼणा फ़ौत, केतिरा ई ज़ख़्मी थी पिया। इंडोनेशियाई साहिल वेझो आयल ज़िलज़िले सबबु रहवासी घरनि खां ॿाहिरि निकिरी आया। किरियल इमारतुनि जे मलबे में दॿियल माण्हुनि खे ॿाहिरि कढण लाइ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
3: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अवार्ड में छा फर्क
1: छा डिफरेंस है एग्जैक्टली
0: माइनर अवार्ड में सिर्फ यो फर्क है कि वार्ड वो हुंदो आ जें जे लाई असा कस्टडी वठण आयो
1: ओके
0: कोर्ट का सीख कयूं ता ठीक है केड़े भी तरीके सा चाहे वो असा के डिजिटल तरीके सा मिले डिफेक्टो तरीके सा मिले टेस्टामेंट्री तरीके सा मिले या नेचुरली मिले जें असा गार्डियनशिप सीख कयूं ता उन जी प्रॉपर्टी जो भी लुक आफ्टर कंदा से अगर के असा गार्डियन अपॉइंट तक उन जी प्रॉपर्टी जी भी लुक आफ्टर करे उन नडे मासूम बार जी भी लुक आफ्टर करण के असा चाहे नो वार्ड
1: वार्ड ऑल राइट
0: आई गार्डियन असा ने के जनो जेको उन बार जी सार संभाल लहण जी जिम्मेदारी खणी
1: ठीक है
0: चाहे पो उन के कोर्ट अपॉइंट करे चाहे वो नेचुरली तरीके सा अचे या उन जो को क्लोज रिलेटिव या नेक्स्ट कोई भी फ्रेंड या गार्डियन थी सके तो दैट इज कॉल्ड गार्डियन
1: मींस बार जी का वेलफेयर करे पियो माइनर जी या वार्ड जी तो उन के गार्डियन असा चाहे
0: गार्डियन में या तो दिसो ना उन जी ये समझो तो उन जी कस्टडी उन के दिनी वेंदी उन जी प्रॉपर्टी जी कस्टडी उन के दिनी वेंदी जेकी उन जे पेरेंट्स जे थ्रू उन के मिले थी पई या अगर ऑर्फनेज या उन जे विरासत में कुछ अचे तो पे हुआ शे तो गार्डियन कोर्ट अपॉइंट कंदी आ वो उन्हें जिसे जी सारा संभाल लांदो बल्कि उन्हें जी पूरी वेलफेयर ताई उन्हें संकट दो जैसे वो बार 18 साल जो न तो थी सके या पाण बालिक न तो थी वाली
1: ऑल राइट सो सर असा गार्डियन दी अचो तो इन जो जेके अंत केडियो जेके अंत काइंड्स एंड जे दी डिफेक्टो गार्डियन थी सकन था डी जो एज वेल एज नेचुरल गार्डियंस थे पिया तो उन थे थोड़ा असा
0: हां ये दीस आर द फोर काइंड्स ऑफ उन का भी लाई थी सकन पर एज पर गार्डियन नेक जे हिसाब से देयर इज अ फोर
1: काइंड्स मां शायद प्रिय ता के
0: जी जी फोर काइंड्स ऑफ चुकन गार्डियनशिप होंगे सबका पहला होंगे ता जे नेचुरल गार्डियंस
1: ओके
0: नेचुरल गार्डियंस वे होना जे के बायोलॉजिकली अस के अल्लाह जी तरफा द गिफ्ट ऑफ द गॉड शब्द हम जे के पीमा मदर एंड फादर
1: वे नेचुरल गार्डियंस
0: दी द नेचुरल गार्डियंस ठीक है डाडो डाडी द वे जो ही नेचुरल गार्डियन थी जो कि बायोलॉजिकल गार्डियन अस जा सने के नेचुरल गार्डियन चो ठीक है अगर मिसाल सपोज बिनन मा को एकड़ो फौत तो थी वने उनजो जो वेरी नेक्स्ट गार्डियन हुंदो उनजी मदर हुंदी अगर मदर फोर्थ थी थी ने तो उनजो फादर हुंदो अगर बिनन में कोई फोर्थ थी ने तो नेक्स्ट गार्डियन उनजो डाडो हुंदो डाडी हुंदी
1: ये सडिया नेचुरल गार्डियंस में पिया
0: अच्छा ठीक है छो तो उनजो छाए त क्लोज एंड ब्लड लाइन सा ताल्लुक रखन ता पिया
1: ठीक है
0: देयरफॉर दीस आर कॉल्ड द नेचुरल गार्डियंस तो दैट इज इन डिफेक्टो गार्डियंस सपोज इनन में कोई भी ना है तो चाचो मामू
1: ओके
0: सपोज अगर वो नंडो बार आ तो उनजो सोट थी सके तो उनजो भा थी सके तो इवन उनजी सिस्टर थी सके सपोज कदें कदें ये भी थी कि अगर मदर जी फादर जी भी शादी थे लुजे तो उन्हें जिधे की सेकंड मदर है स्टेप मदर
1: वो डिफेक्टो में
0: वो भी डिफेक्टो में अच्छी सके थी मकसद ही हुआ तो बार जी वेलफेयर के डिसोर्ड पाऊं दो बार के बार जी सही संभाव मतलब बार जी नरिशमेंट नर्चर एंड नेचर बिन बार जी जी किन सुटे तरीके साथे ठीक है सर नरिशमेंट चाहूं दो पेट्रोनिक चाहूं सरपरस्ती बार जी सुटे की सके अने के चाहूं डिफेक्टो कोर्ट ने में कोर्ट जी परमिशन वठने की जरूरत ना वो पान भी
1: बस पांच पान ऑटोमेटिकली
0: कस्टोडियन थी
1: सके
0: ओके ओके दिन ताने तंजा डिजोर
1: डिजोर
0: डिजोर जो पर्पस ही सिर्फ यह था इन में कोर्ट ई अपॉइंट कंदी के हे मानू हन बार जे लाए तमाम बेहतरीन कस्टोडियन एंड गार्डियन साबित थी सगंदो ठीक है उने के साथ चंदो डिजोर जे की कोर्ट अपॉइंट
1: जी जी जी
0: देन देयर कम्स अ टेस्टामेंट्री गार्डियन टेस्टामेंट्री गार्डियन इने मतलब आ के अ पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड by the deceased parent or deceased natural guardian ke mujhi fourth thane kha po je jo flaw concern a chan me chacho thi sake to unme bha thi sake to unme mother thi sake thi suppose dado thi sake to pi pinji hayati me yo will likh raha hai yani ke testamentary testamentary
1: chan
0: mana will je through ke instrument je through declare kare vane to suppose shehbaz hai suppose babar ya suppose koi bhi mujhe bar jo hai इंदर टाइम में जो ना गार्डियन थी मुझे भयाव थे उन टर्म इस्तेमाल कौन पॉजिटिव सेंस
1: जी जी
0: यूरोप में लफ्ज इस्तेमाल खास करे एकड़ी अमेरिकन सोसाइटी में लफ्ज इस्तेमाल द गॉड फादर
1: ऑल राइट
0: तो उन जो पोया जो सरप्रस थी करे जो पोया को गॉड फादर हो जे गॉड फादर मतलब सार संभाल
1: सार संभाल
0: जो जे बार जे को पी जे मां जे मरण खा पो या उन जी अगर सपोज डाइवोर्स ही हुई या हालात लई खराब थी या ने बार बिन ने सो वण चाहे जो के उन जा एक मेंटल है फिजिकल सिचुएशन बार जी ना है वो थी सके तो बार ने वो सुठी परवरिश न मिली सके तो उन सिचुएशन में गॉड फादर अपॉइंट थी नान के मना असा इन जे बार जी संभाल असा लहंदा दीस आर द फोर काइंड्स ऑफ
1: जी ता टेस्ट टेस्टामेंट्री चयो गार्डियन इन में ये है मिसाल को लेट्स सपोज के फादर जो उनके खबर होंगी है हाँ मुझे वक्त करीब है डेथ करने वालों है तो उनका पे विल लिखी छो है यार मुझे चिल्ड्रन की वेलफेयर कह उनकी ये चई
0: चई अगर इन महंगे चलिए तो हयाती में भी हयाती में भी डिक्लेयर कर सकता पर थ्रू विल वालिद पेंजी हयाती में या मदर पेंजी हयाती
1: अच्छा मदर भी करे सके
0: मतलब नालो जो लव पेरेंट पेरेंट जो मकसद ही होता है कि मजो नंदो तो फादर ही हो जाए पेरेंट्स माना बिन ब शय माना फादर एंड मदर मिलंदा तो पेरेंट्स अड रहेगा
1: ओके
0: तो बिन में कोई भी डिक्लेयर करे सके तो मुझे मरण का पो मुझे बार की परवरिश ने हवाले मुझी तरफ जेके भी प्रॉपर्टी लेफ्ट थी या जेकी बार दे वेंदी ट्रांसफर थी उन जी भी सारा संभाल हे लहंदो मैं एक मिसाल लिया तमाम तमाम बेहतरीन अगर असा बुढ़ा में भी कुछ अड़ा हों मुख्य उम्मीद होंगी कि उ डीसी कॉमिक्स का वो या बैटमैन का जो है ना अवेयर हों उनमें रोल हों बटलर जो ब्रूस वेन वो मशहूर करेक्टर आ बेसिकली जो बैटमैन आ उन जो अल्टर ईगो ब्रूस वेन आ ब्रूस वेन जो अल्टर ईगो बैटमैन
1: आ
0: जैसे वो कें भी तरीके से या कुछ भी हालात खराब थी वेंदन गोथम सिटी में तुझा पेरेंट्स मारजी वेंदन जैसे पेरेंट्स मारजी वेंदन तो बटलर हों वो बैटमैन की प्रॉपर्टी का वी कर बैटमैन की एजुकेशन का वी कर ब्रूस वेन की एजुकेशन का वी कर जेस तई वो पा अची कर एडल्ट न तो थे तो उनको बटलर ही सजी सिचुएशन सजी उनके संभाली इन में ये समझो तो बाय डिफेक्ट भी थी डिफेक्टो भी थी डिफेक्टो भी थी डिजोर भी थी टेस्टामेंट्री गार्डियन भी माना इन में वो बटलर ही प्लेज द रोल ऑफ फादर मदर टीचर उनको गार्डियन सजो सजो रोल प्ले तो करे वो मिसाल है अगर अस बुधवार
1: अच्छा सर ये गार्डियन अपॉइंट केर कंदो है
0: गार्डियन अपॉइंट करण के लिए पहले तो मैं डिफेक्ट हो जी कोई भी
1: वो डिफेक्ट अंडरस्टूड आवर पेरेंट्स का बाद में होना जा
0: जरूरत है
1: यस
0: कदें कदें चाहूंगा तो अस कोर्ट के थ्रू परमिशन वो वी वॉन्ट टू बी द गार्डियन ऑफ दैट पर्सन मिसाल कुछ केसिस अड़ा हों के प्रॉपर्टी इलाही वारसन से मुश्तमिल होंगी कुछ माइनर्स हों कुछ मेजर हों सपोज अगर मैं बैंक जो ही मिसाल वा अगर वार्ड की अस प्रॉपर्टी का जिक्र हूं तो बिन किस्म की प्रॉपर्टी थी इमोबल प्रॉपर्टी थी इमोबल प्रॉपर्टी थी सो इमोबल प्रॉपर्टी में तबर आ घर लैंड हों कोई भी प्लॉट हों उनकी लुक आफ्टर बार की करनी है वी असेंगे किथे मिसयूज न थी वे या सेल आउट न थी वे या मॉर्गेज से न हली वे या कोई पेंे फायदे रेंट आउट से न डेई छे सो बन मूवेबल प्रॉपर्टी जैमें तुझा बैंक्स तुझी ज्वेलरी थी वी तुझा बॉन्ड्स वे बॉन्ड्स सपोज लखन में करोड़न में तो लगे बार नंढा उनकी वेलफेयर के लिए कुछ न कुछ तो गार्डियन अपॉइंट थे खे सो कोर्ट में कोई भी माइनर के लिए वही करी गार्डियनशिप वी तो जैसे ही बार वो नो तेस मैं इन लुक आफ्टर कदम छो तो मैं इन क्लोज एंड नियर रिलेटिव उनमें कोई भी
1: मतलब फादर एंड मदर भी हयात है उन पा में तालुका सही न हूं माइनर अक्सर बेजार हूं त्यार न पी से रहो न माँ से इन सिचुएशन में कड़ी रेमेडी बुधाई उन माइनर लाइ एज वेल एज उन गार्डियंस
0: बाबर सभी का वर्स्ट डिसीशन अल्लाह के भी ना पसंद है अगर कोई भी पैर डाइवोर्स वे सभी का नापसंदीदा अमल जो अल्लाह की नजर में आ तलाक
1: तलाक
0: क्योंकि तलाक सिर्फ बिन पेरेंट्स के विच में न थी बिन खानदान के विच में थी बिन खानदान का भी जी सेपरेशन वो बार जो बार सफर कर मेंटली या फिजिकली जो बार डिस्टर्ब वो कंडीशन अस हर डी कोर्ट में ऊँ फैमिली कोर्ट भरी पी
1: है
0: जी वार्ड कोर्ट चाहूँ भरी पी है हर डी एतरी कंडीशन वर्स्ट होंगी जो बार अगर पैं पी से मिलन अचन या माँ से मिलन अचन उन बिन कलाक में अस उन जज्बात निकरते
1: अच्छा
0: बार रोईंदे अस पेरेंट्स के रोईंदे मदर के रोईंदे डाडन के रोईंदे कुछ कंडीशन अड़ी होंदन जो बार एतरी तो शदीद नफरत होंगी पी का तो पी की शक्ल ऐसा भी पसंद न कुछ वर्स कंडीशन अड़ी होंदन जो मदर का केर ठीकु आहे न मदर जी जेकी गोद आहे उहा त हिकिड़े क़िस्म सम सां त यूनिवर्सल शेल्टर
1: आहे
0: माउ जो यूनिवर्सल शेल्टर आहे बचे जे लाइ पर उहा कंडीशन बि ॾिठी आहे जो ॿारनि जेके अठनि नवनि सालनि जा या मेच्योर थियनि था थोरा उन्हनि दरवाज़े ते घिरंदे ई कोर्ट में चयो असांखे पंहिंजी माउ जी शकल ई नाहे ॾिसणी एॾी कोई कंडीशन वर्स सां करे छॾनि फैमिलीज पाण में मिली करे त हुनजो अल्टीमेट जेको नुक़सान थिए थो उहो ॿारनि ते थो थिए पियो ॿार पोइ छा था ठहनि त असां न पीउ ॾे वेंदासीं न माउ ॾे वेंदासीं त ॿार पोइ हिकिड़ो नयो रस्तो ॻोल्हींदा आहिनि जेके असां चलूं या ॾाॾो या ॾाॾी या नानो या नानी
1: ओके
0: ठीकु आहे त असां हिननि ॾे वञणु पसंदि
1: कंदासीं
0: एतिरी कंडीशन बि ईंदी आहे त ॿार चवंदा असांखे ऑर्फनेज मोकिले छॾो
1: ओके
0: असां हेॾे न वेंदासीं असां हेॾे न वेंदासीं ॿी माॾे न वेंदासीं छो त असां बर्दाश्त नथा करे सघूं त असांजो अधु पेर पीउ ॾे पियो हुजे अधु पेर माउ जे घर में पियो हुजे छोकी ॿार जी ज़हनी तवाज़ुन जो करे हिते डिस्टर्ब थो थिए पियो ॾाढो
1: अच्छा हिन ते तव्हां उन्हनि पेरेंट्स खे छा
0: मां तव्हांखे जीअं मां शुरूआत हिन सवाल जी जीअं शुरूआत कई त अलाह खे नापसंदीदा अमल आहे तलाक ऐं सेपरेशन मुंहिंजी सलाह इहा आहे त असां इन खां बि अॻु में पहिरियों बि हज़ार दफ़ा मां ॿुधाए चुको आहियां हिन तव्हांजे मीडियम जे थ्रू ऐं पाण हिन ते हिकु न ॿ दफ़ा प्रोग्राम करे चुको आहियां अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन जो जॾहिं बि अगरि अहिड़ी को सिचुएशन क्रिएट थिए त मां इहा ई सलाह ॾींदुमि त घर जा जेके वॾा भाती आहिनि दे मस्ट प्ले द रोल ऑफ द मीडिएटर इन मसले खे रिज़ोल्व करनि
1: अच्छा हिते अमूमन इहे ॻाल्हियूं चई वेंदियूं आहिनि बाबा तव्हांजो ज़ालिम सॼो पंहिंजो आहे चकर तव्हां असांखे विच में न आणियो हिते कंहिंजो कसूर आहे
0: इहो इहो आहे बेसिकली
1: सुठी
0: ॻाल्हि मूंखे वणी जॾहिं मौला हज़रत अली खे जॾहिं चवंदा आहिनि की अली सुम्हण खां अॻु में ॿिनि माण्हुनि जे विच में दरमियान में फ़ैसिलो कराए सुम्हिजे त इहे बि माना हिकिड़े क़िस्म सां तुंहिंजे माना अॻिते वञण जा माना ईअं सम्झो माना तुंहिंजे बुलंदी जा माना अञा वधीक बुलंद मक़ाम ते पुॼण जा बि हिकिड़ा ज़रिया आहिनि की अली ॿिनि माण्हुनि जे विच में सलाह करे सुम्हिजे त हिन मां अगरि मां नंढड़ो मिसाल वठो हदीस त इलाही वॾी आहे हुन में कलम में क़ुरान पढ़ण जो बि ज़िकिर आहे हुन में पंहिंजो हे ॿिनि माण्हुनि जे विच में या ॿिनि धुरियुनि जे विच में सलाह करण जो बि ज़िकिर हदीस तमामु वॾी आहे नंढड़ो टुकड़ो थो ॿुधायां त इन मां मुराद छा आहे की अलाह ऐं रसूल खे इहो अमल एॾो पसंदि आहे की कोई माण्हू ॿिनि धुरियुनि खे पाण में ठाहे ॿिनि धुरियुनि खे ठाहिण जो मतिलबु ॿिनि फैमिलीज़ खे ठाहिण ॿिनि फैमिलीज़ खे ठाहिण जो मक़सदु आहे लाज़मी आहे त अगरि झेड़ा न थींदा सुभाणे हिन में ग़लति कम न थींदा थी सघे थो झेड़नि जे करे हालात ख़राब थी वेंदा आहिनि ॿ फैमिलीज़ पाण में विढ़ी वेंदियूं आहिनि झेड़ा बि थींदा आहिनि फुदगियूं बि थी वेंदियूं आहिनि मार कुट ते बि माण्हू हलिया वेंदा आहिनि
1: बिल्कुलु
0: ज़रूरत पवे त अगरि कंहिंखे ज़रूरत पए इंटरफेरेंस करण जी त उहो इंटरफेरेंस करे त जीअं ॿ घर तबाह न थियनि ॿ फैमिलीज़ तबाह न थियनि जीअं उनजे ॿार बचनि जेको नुक़सान न अचे ऐं उहे हिकिड़ी सुठी ऐं पीसफुल ज़िंदगी पंहिंजे अॻिते सफ़र गुज़ारे सघनि
1: सो देट मीन्स तव्हां उन्हनि खे इहो ई मैसेज ॾींदा स्पेशली जेके वॾा आहिनि त उहे गैर ज़िमेवार न थियनि ज़िमेवारी खां भॼनि न ऐं जेको आहे न पंहिंजो किरदार अदा
0: करनि शादियुनि ताईं तव्हां शादियुनि में मौजूदु आहियो महंदियुनि में मौजूदु आहियो ढोलकियुनि में मौजूदु आहियो हर शइ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे त शादी जे अंदरि थींदड़ जेके इश्यूज़ आहिनि उनखे रिज़ोल्व करण बि तव्हांजो
1: बिल्कुलु प्रोग्राम जारी आहे हींअर असां हलंदासीं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ॾांहुं असां सां गॾु रहिजो
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
3: उसी खिबसे की बनी है आवाज
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज
4: It's 7:30 PM. This time check is brought to you by
5: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन

0: शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम
1: छा तवां भी पंहिंजो ख्वाबनि जो घर हिकु अहिड़ी जाइ ते ठाहिण चाहियो था जिते हुजे तहफ़ुज़ जदीद सहूलियतूं ऐं मंज़ूर थियल सिक्योरिटी
2: त पोइ भली कार हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर में
1: सखर शिकारपुर रोड ते
2: डॉक्टर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल साम्हूं
1: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां मंज़ूर थियल
2: हिकु शानदार ऐं क़ाबिले एतमाद रिहाइशी मनसूबो
1: हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर
2: रिहाइशी प्लॉट्स 80-120 150 ऐं 200 गज़ जा
1: ऐं कारोबारी मौक़े Like commercial plots, 50 गज ऐं 600 गज
2: हिते तव्हां खे मिलनि थियूं जदीद सहूलियतूं
1: साफ़ मिठो पाणी
2: बिजली गैस
1: 24 कलाक सिक्योरिटी
2: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि हीउ मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेझो आहे
1: जेको रिहाइश ऐं सीड़पकारी ॿिन्ही लाइ बहितरीन मौक़ो बणाए थो
2: अॼु ई पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो
1: फौरी कब्ज़ो ऐं फौरी रजिस्ट्री
2: कॉन्टेक्ट
1: 03-00-93-17-25
2: and 03-13-27-57-860 Husaini Manzil Housing Scheme Sakhar
1: Tawaje mehfooz mustaqbal aur behtareen investment jo behtareen intekhab
3: Sona Sehat Kamyabi Scheme ke tehat Sona ki jadid aur zyada afadiyat wali khade khareede aur paaye beshumar qeemti inaamat
2: क्या आप अपना पैगाम हजारों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? चाहे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स हो किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक बिजनेस के प्रमोशन जॉब वैकेंसीज पब्लिक अनाउंसमेंट्स इवेंट्स सेमिनार्स स्पेशल ऑफर्स स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स लाइव मेंशंस और कस्टमाइज्ड प्रमोशनल कैंपेन्स या किसी भी किस्म के एडवर्टाइजिंग कैंपेन GFM है आपका भरोसेमंद मीडिया पार्टनर अपनी एडवर्टाइजिंग को दीजिए ज्यादा रीच बेहतर इम्पैक्ट और मौसर नतीजे एडवर्टाइजिंग और बुकिंग के लिए आज ही राब्ता करें स्टेशन मैनेजर बाबर शेख 03-00-93-19-667
4: यार मछा क्या किथे वन्या घर में बैठो यहाँ पर ठीक ही नया शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई ना ही थी
5: छो भला छा थियो तोखे साफ साफ बुधा मसलो छाए
4: यार एक मसलो हुजे त बुधाया मुझे ते मसलन जी कतार लगल आहे न भूख सही लगे थी ऐ जे कुछ भी खावा थो त हजम ही न थो थे पेट फूक जी वने थो हथ पेर सुन थी वनन था ऐ सजो डी सुस्ती महसूस थे थी कह कम जो रहंदो ही नाया
5: यार तुजा घणा न बस एक ही मसलो आ
4: एक इहो की है
5: हां तुजो मैदो खराब आ छा तो न बुधो आ मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त जे मादो सही न होंदो त भूख भी न लगंदी न हाजमो थींदो ऐ न ताकत मिलंदी
4: त पो मां छा कया
5: सोलो हल आहे इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स हे कुदरती जुज़न मां तैयार कयल कोर्स तुजे जिस्म जो हिस्सो बणजी तुजे मैदे के बिल्कुल ताज़ो ऐ मजबूत करे छॾींदो भूख खुली वेंदई खाधो सुठे नमूने हज़म थींदई पेट भूखजण ख़तम सुस्ती ख़तम जिस्म में ताकत ईंदई
4: वाह यार वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई थी पर ही किथे मिलंदो
5: इहो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे साम्हूं अल नूर दवाखाना रोड़ी ऐं राब्ते जे लाइ नंबर बि अथई 03-55-58-00-616 शिफाए मैदा कोर्स मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त छा तव्हां जो ख़्वाबु आहे डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण त पोइ तव्हां लाइ आहे हिकु बहितरीन मौक़ो सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में हिन सेशन लाइ दाख़िलाऊं जारी आहिनि 4 सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN GBSM 5 सालनि जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी DPD 5 सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV CMW CNA सहूलियतूं स्कॉलरशिप्स मौजूद बिन सालनि जे कोर्सेस में एडमिशन बिल्कुल फ्री जॾहिं त DPD प्रोग्राम में सिर्फ़ 10,000 रुपया दाख़िला फीस ऐं फीस सेमेस्टर सिर्फ़ 60,000 रुपया हिते तव्हांखे मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम्स जदीद लेबोरेटरीज मुकमल लाइब्रेरी तजुर्बेकार फैकल्टी हॉस्टल पिक एंड ड्रॉप ऐं फिज़ियोथेरेपी OPD जी बहितरीन सहूलियत ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंज़ूर शुदा ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे याद रखो सीट्स महदूद आहिन तह करे पंजे रोशन मुस्तकबिल लाए अगली दाखला वठो एक खास गाल इते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सेस ओटी हेल्थ टेक्नीशियन एमबीए सब कोर्सेस पिन थिना आहिन एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 सखर टाउनशिप मेन बाईपास रोड सखर राबतो 07115635642 आई 03108166111
2: हेल्थ इज वेल्थ जहां माहिर डॉक्टर्स शेयर करते हैं सेहत की असली बात GFM का हेल्थ अवेयरनेस शो होस्ट आगा जब्बार के साथ जहां मुल्क के मायानाज हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सेहत से मुतल्लिक अहम टॉपिक्स पर अपना एक्सपीरियंस प्रोफेशनल राय और मुफीद मालूमात शेयर करते हैं अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज और हेल्थ केयर ब्रांड को हजारों लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए हेल्थ इज वेल्थ का हिस्सा बनिए हेल्थ एक्सपर्ट या प्रोग्राम स्पॉन्सर के तौर पर स्पॉन्सरशिप के लिए आज ही रब्ता करें आगा जब्बार 03009312700
6: 44 सालों जो तजुर्बो हजारे मरीजन जो एतमाद आगा होम्योपैथिक क्लिनिक होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद 44 सालों जे वसी तजुर्बे सा हर किस्म जा आसाबी अमराज जोड़न जो सूर मैदे में जलन गैस बदहजमी तेजाबियत गुर्दन जी पथरी बवासीर बे औलादी वारन जो किरण गंजपण फॉलेज खारिश ऐं बियन मुख़्तलिफ़ सेहत जी तकलीफ़ुन लाए माहिराना होम्योपैथिक सलाह ऐं मुआसर इलाज फराम करे रहा आहिन आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर नए पिंडवारी पुल जे सामू PSO ऐं शेल पेट्रोल पंप जे विच में टाइमिंग छंछर खां खमीस सुबुह 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं अपॉइंटमेंट ऐं वधीक मालूमात लाइ हींअर ई राब्तो करियो 03-26-22-00-440
7: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
8: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز GFM 88 کی آواز
7: GFM 88 نیٹورک سندھ کی آواز
9: تو بھلیکار ایک بیروبیئر پروگرام لیگل کارنر میں بابر شیخ ہوا سنگ گڈا ہے ایڈوکیٹ شہباز حفیظ صاحب اساں سنگ موجود ہیں اساں جو جو ٹاپک ہے گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ 1890 فنداسی شہباز صاحب بگانے اساں گال کئی تے اپوائنٹ جو کا تے گارڈینز کے کیئر کرے پتا چار کائنٹس بھی بدھائیوں ڈی فیکٹو ڈی جور testamentary and chauthi kehni budhai ta
10: natural
9: guardians so qualifications na jo cha ho jan gurjan nan guardians mein kedi edu khasiyat ho jan gurjan jeke hue bator guardian minor ja thian thi sakan ji
10: very good question baba chuke jane bhi asa family court mein application dakhil karaina char ka panch shayon jeke court pe under supervision mein rakhandi agar unan galyan te agar koi bhi application dein waro jeko claim to kare I want to be the guardian of that माइनर
9: जी जी
10: उनमें कोर्ट या पंच छह शयूं ॾिसंदी सभ खां पहिरियों के वो इल टेम्पर्ड न हुजे बद अख़लाक बद मिज़ाज न हुजे ॿियो गुड करेक्टर्स हुजनि ठीकु आहे टियों हुनजो को सेल्फ इंट्रस्ट न हुजे सेल्फ इंट्रस्ट ईअं हूंदो आहे की अगरि सपोज एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल आर इमूवेबल हैज़ बीन लेफ्ट बाय द पेरेंट ऑफ द माइनर ठीकु आहे ऐं उहा प्रॉपर्टी ते हुनजी नज़र न हुजे ठीकु सपोज जीअं मां तव्हांखे मिसाल ॾियां अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आहे त हुन में तव्हांजा घर बि थी वियो तव्हांजो प्लॉट बि थी वियो तव्हांजी एग्रीकल्चर लैंड बि थी इमूवेबल प्रॉपर्टी इहा हूंदी आहे त सपोज़ किथे ज्वेलरी पई हूंदी आहे किथे अकाउंट में पैसा पिया हूंदा आहिनि किथे बोन जी शकल में पवंदे छा हुनजी हुन ते इविल आई त न आहे बुरी नज़र त न आहे सपोज को अहिड़ो घर आहे हुनजी गार्डियनशिप वठे थो पियो गार्डियनशिप वठण खां पोइ ॿार खे त पाण सां राए छॾी पर घर किराए ते ॾेई छॾी हुन मां जेको बि हुन मां जेको बि कुझु मिले थो उहो पाण वटि रखे थो या अहिड़ो प्लॉट आहे उहो लाइसेंस ऐं लीज़ ते त न ॾेई छॾी बाबा हिनखे तव्हां हली टेम्परेरी यूस कयो हुन मां जेको बेनिफिट मिले उहो पाण वठे ठीकु ऐं हुन खां पोइ इहो आहे की हुन में कैपेसिटी ऑफ माइंड मतिलबु कहिड़े बि क़िस्म जी हुन में मेंटल डिसेबिलिटी न हुजे पंहिंजो डिसीशन्स वठी सघे जेके ॿार जे बि हक़ में सुठा डिसीशन्स हुजनि ऐं ॿार जी बि वेलफेयर में हुनखे फ़ाइदो ॾेई छॾनि छोकी 5 खां 6 ॻाल्हियूं इहे आहिनि की मां थोरो शॉर्ट में तकड़ि में रिपीट कर शुड नॉट बी इल टेम्पर्ड हुनखे इनकेपेसिटी ऑफ माइंड न हुजे
9: सही आहे
10: ही शुड हैव नॉट सेल्फ इंट्रस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर ठीकु आहे ऐं प्लस में बैड करेक्टर जो न हुजे ऐं सुठे इख़लाक जो हुजे जेको ॿार जी वेलफेयर में मदद ॾिए दीस क्वालिटीज़ आर टेकन अंडर सुपरविजन या टेकन अंडर आईस ऑफ द कोर्ट कोर्ट विल कंसीडर इट जॾहिं कोर्ट कंसीडर कंदी हुन खां पोइ वञी करे हुनखे एज़ अ गार्डियन अपॉइंट कर दी
9: ओके एंड गार्डियन जो सर ड्यूटीज के जुंदी मतलब वो छा जो है तो माइनर जी के कैद केड़ी किस्म जी वेलफेयर तो करे
10: गार्डियन जी ड्यूटीज

0: रहण भी सुठो हुजे ऐं ॿार जा विज़िटेशन बि थींदा रहनि ॿारनि जूं शादियूं फोतियूं गमियूं शादियूं मुरादियूं जेको असां लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदा आहियूं पंहिंजी सिंधी लैंग्वेज में उहो ॿार जी प्रॉपर तरीक़े सां थींदियूं रहनि इहा बेसिक जेके ड्यूटीज़ आहिनि कंहिं बि गार्डियन जी के जेसिताईं उहो 18 साल जी एज ते नथो पुॼे तेसिताईं उहो लुक आफ्टर करणु हुनजो फ़र्ज़ु आहे
1: All right, मतलब ये टे तव्हां चओ था सभिनी ड्यूटीज़ एंड गार्डियन्स जो ऑल राइट सर डाइवोर्स ते अगरि असां अचूं पिया पेरेंट्स में विच में ख़ुदा न ख़ासि डाइवोर्स बि थी वञे ऐं जेका त माइनर जी कस्टडी मदर वटि पई अची वञे त जेको फादर आहे उनखे कीअं विज़िटेशन मिली सघे थी या उनखे अलो आहे या न आहे
0: हा वेरी गुड क्वेश्चन बाबा इनखे असां चवंदा आहियूं विज़िटेशन राइट
1: ओके
0: फैमिली लॉ में इनखे विज़िटेशन राइट चओ
1: ॾिनो वियो आहे
0: गार्डियन में बि इनजो ज़िक्र आहे विज़िटेशन राइट आहे गार्डियन विज़िटेशन जो राइट जो पर्पज़ इहो आहे की पीउ मां सेपरेट थी विया
1: आहिनि
0: या पीउ मां फोत थी विया आहिनि मुंहिंजा नेचुरल गार्डियन बि फोत थी विया आहिनि त कस्टडी ॿिए कंहिं वटि वञे थी पई उन टाइम में अगरि सपोज कोई ॿार जो ई क्लोज रिलेटिव चए थो जंहिं वटि कस्टडी आहे जंहिं वटि जेको मुंहिंजो गार्डियन अपॉइंट थियो आहे असांखे ॿार खे असां मिलणु ॾिनो हुयो छो की उहो हाली टेम्पररी कस्टोडियन आहे
1: ठीकु आहे
0: ठीकु आहे त असांखे इहा ख़बर पई आहे त असांजो जेको ॿारु आहे हुनजी जेकी न जेकी वेलफेयर आहे उहो सही नथी
1: थिए
0: काइंडली असांखे ॿार सां मिलणु ॾिनो वञे पोइ हुन में इहो छा थींदो आहे त अगरि सेपरेटिड आहिनि डाइवोर्स्ड आहिनि ॿार हाली यकदमि मां खणी वई पाण सां गॾु पीउ खे न ॾिनई पीउ एप्लीकेशन ॾींदो पेरेंट एप्लीकेशन फादर एप्लीकेशन ॾींदो त मुंहिंजे ॿार खे मूंसां मिलणु ॾिनो वञे अगरि ॿार पेरेंट वटि रहिजी विया आहिनि माउ खे कढी छॾियो अथनि माउ खे कंहिं या हुनजी वालदा खे कहिड़े बि सिचुएशन सां ॿार सिचुएशन खां हुनखे बेदख़ल करे छॾियो अथनि या हुनखे सपोज डाइवोर्स मिली वई आहे त उहा लेडी अगरि चाहे त कोर्ट में एप्लीकेशन ॾेई करे विज़िटेशन राइट जो हक़ वठी सघे थी पई ईअं ई सपोज अगरि गुज़ारे वई आहे अगरि लेडी गुज़ारे वई आहे ॿार जा नाना नानी ज़िंदा
1: आहिनि
0: त नाना नानी बि हुनजो विज़िटेशन जो राइट हक़ वठी सघनि था त वाकई असांजो जेको पोटो आहे असांजो जेको पोटो आहे वाकई उहो सुठी कंडीशन ते आहे या न आहे पोइ इन सिचुएशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी अथॉरिटी आहे 2018 जी उन में सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चवे थी पई त कोर्ट खे हिकिड़ो टेम्पररी ऑर्डर बि इशू करणो आहे अलो बि करणो आहे ऐं प्लस में उनखे मुलाक़ात करण जी इजाज़त बि ॾियणी आहे ऐं पूरो जो पूरो शेड्यूल ठाहे ॾियणो आहे हफ़्ते में सपोज शेड्यूल ईअं हफ़्ते में ॿ ॾींहं ॿार पंहिंजी पीउ वटि रहंदो हफ़्ते जा टे ॾींहं पंहिंजी माउ वटि रहंदो ईद उल अज़हा जी अगरि ॾींहं अचनि था पिया त अगरि 15 रमज़ान पंहिंजे पीउ माउ वटि रहंदो 15 रमज़ान पंहिंजे वालदा
1: वालदा वटि रहंदो
0: ईद जा टे ॾींहं त ईद जो चंड राति खां वठी करे ईद जे ॿिए ॾींहं ताईं पीउ वटि रहंदो वरी ॿिए ॾींहं खां वठी करे ईद जे टे ॾींहं ताईं पंहिंजी माउ ऐं मदर सां रहंदो ईअं ई अगरि स्कूलिंग आहे त स्कूलिंग जी फीस वग़ैरह जेकी बि हूंदी उहा पेरेंट भरंदो
1: ठीकु आहे
0: ऐं उनखां अलावा अगरि ॿार पंहिंजे पीउ ॾे वञणु चाहे त सुबुह जो 8 बजे खां वठी करे शाम जो 5 बजे ताईं उहो पंहिंजे पीउ वटि वञी सघे थो ऐं शाम खां बाद में पंहिंजी वालदा
1: सघे थो
0: त कोर्ट इहो छा करे ॾिनो हिकिड़ो पूरो शेड्यूल ठाहे ॾिनो आहे त हिन सिचुएशन खे ॿार खे तव्हां पंहिंजे हस्बैंड खां हिन खां मिलायो पर असां वटि सिचुएशन छा आहे कॾहिं कॾहिं इलाही केसिस असां बि हलाया आहिनि त घटि परमिशन मिलंदी आहे ॿाहिरि वञण जी जेकी बि विज़िटेशन थींदियूं आहिनि सभु कोर्ट जे अंदरि थींदियूं
1: आहिनि
0: पोइ उते हिकिड़ा विज़िटेशन जे लाइ वार्ड हाउस ठाहिया विया आहिनि जेके चिल्ड्रन हाउस चवंदा
1: आहिनि
0: वार्ड मतिलबु माइनर ॿारनि जा हिकिड़ा नंढा माना हुते हिकिड़ा ई सम्झो कमरा ठाहिया विया आहिनि जिते ॿारनि जा खिलौना ॿार जी हर उहा बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल हूंदी आहे जंहिंमें अगरि माइनर आहे त उहो इंजॉय करे सघे पंहिंजे पेरेंट्स सां पोइ कोर्ट जी तरफ़ां मिसाल सपोज़ 12 बजे खां 2 बजे ताईं या सुबुह जो 9 बजे खां 12 बजे ताईं टाइम मुक़ररु हूंदा आहिनि उन दौरान तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे शयूं कपिड़ा खिलौना वठी करे ॾेई छॾियो पोइ उहो पंहिंजे पेरेंट्स सां बाद में जीअं टाइम ओवर थींदो उहो पंहिंजे पेरेंट्स सां खणी हलिया वेंदा सो विज़िटेशन राइट जो पर्पज़ इहो हूंदा टू लुक आफ्टर टू लुक एट दैट द माइनर इज़ बींग ट्रीटेड वेल ऑर नॉट ॿार पंहिंजी लाइफ खे सही इंजॉय करे थो वेल मैनर्ड आहे वेल मेंटेन्ड आहे बसि पर्पज़ इन जो इहो हूंदो आहे त असां ॾिसूं त ॿार
1: पंहिंजी सर हिकिड़ो ॿियो क्वेश्चन मुंहिंजे ज़हन में अचे पियो त डाइवोर्स खां बाद में जेको आहे त या डाइवोर्स थी चलो बाद में त अचूं कंहिंजी हस्बैंड फादर या मदर जेको आहे त अगरि डेथ थी वञे ऐं मदर वटि ॿार रहियल आहे माइनर रहियल आहे ऐं हू ॿी शादी पई करे वठे ठीकु आहे त सोतेलो पीउ हुनजी सही तरह वेलफेयर कोन थो करे त इन सिचुएशन में माइनर खे जेको आहे त उन वालदा वटि कस्टडी रही सघे थी या उनजे लाइ कोर्ट जेको आहे डिसाइड कंदी त हिन जो कस्टोडियन ॿियो थिए
0: इहो डिपेंड करे थो सपोज़ अगरि

0: छोकरी
1: ओके okay.
0: अगर छोकरी आ उहा मेजर आ त उहा गैर महरम आ पंहिंजे सेकंड माना मदर जे गैर महरम आ अगर उहा चाहे त पंहिंजे वालिद चाहे त उहा कस्टडी वापसि वठी सघे थो अर्ली एज में
1: वालिद त हुनजो डेथ करे वियो
0: आहे वालिद डेथ
1: ॾाॾो
0: ॾाॾो या हुनजो चाचो उन्हनि जी कस्टडी वठी सघे थो बाबा हे न्याणी असांखे ॾियो
1: हुनजी
0: परवरिश असां कंदासीं ॿी सिचुएशन में जेकॾहिं कोर्ट कंसीडर करे थी पई जीअं असां ॿुधायासीं क्वालिटीज़ असां ॿुधायासीं त छा क्वालिटीज़ हुजणु खपनि अगरि कोर्ट कंसीडर करे थी ठीकु आहे न इट इज़ ऑब्ज़र्विंग डेट अंडर द आई ऑफ द लॉ के अगरि असां मदर आहे हुन ॿी शादी कई आहे पर स्टिल उहो हुनजी सुठी परवरिश करे सघे थो त पोइ हुनखे कोर्ट खे एतिराज़ न हूंदो
1: आहे
0: त बाबा मदर राज़ी आहे मुंहिंजो जेको सेकेंड हस्बैंड आहे उहो राज़ी आहे त बाबा तव्हांजी न्याणी खे पंहिंजी न्याणी वांगुरु रखंदो त अल्टीमेट पर्पज़ छा हिन एक्ट जो टू वेलफेयर ऑफ द माइनर
1: ओके ओके
0: जेसिताईं ॿार जेसिताईं उहो एडल्ट थी थिए या एडल्टहुड खां पोइ हुन जा पंहिंजा डिसीशन्स आहिनि हुनजी स्कूलिंग प्रोवाइड करनि था पिया हेल्थ हुननि जी सुठी रखनि था पिया हुननि जी छा चवंदा आहिनि इहो मेंटेनेंस हुन अगरि ॿार जी सुठी आहे त हुन खां बेस्ट ऑप्शन ॿार लाइ त कुझु न आहे छोकी सोल पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट इज़ फॉर द वेलफेयर ॿार ई ॿार खे हर तकलीफ़ खां बचाइणो
1: आहे
0: ॿार खे सुठी परवरिश ॾियणी आहे त सोल पर्पज़ ऑफ दिस
1: जिते बि हुनजी कस्टडी
0: ॾिठो वञे अगरि सपोज हाणे कंहिंजी धीअ शादी थी वई आहे सेपरेट थी विया आहिनि हाणे हस्बैंड जो उहो करेक्टर ई न आहे हस्बैंड इमोरल एक्टिविटीज़ में आहे हस्बैंड जुआरी आहे हस्बैंड शराब थो पीए पियो
1: हस्बैंड जो
0: सोर्स ऑफ इनकम ई न आहे हाणे तव्हां तव्हांखो हिकिड़ो जनरल सवाल थो कयां सिटीज़न छा तव्हां हलो कंदो कंहिंखे
1: न बिल्कुलु बि न कंदो
0: भले न्याणी
1: आहे
0: भले पीउ हुनजी धीउ
1: आहे
0: बट द करेक्टर ऑफ द पर्सन इज़ सो बैड what kind of decision you are going to take
1: exactly not at
0: all cha kando at that situation tama favor hi dindo ke baba let the minor be remain with the mother
1: okay
0: agar unke sutho environment mile to pyo sutho ghar mile to pyo suti schooling mile thi pai that is a very good thing for the minor ke ultimate sole purpose unjo serve to the
1: welfare se pai
0: so that is a reason ke depend kare to the what kind of situations are there when the appointment of the guardianship is being considered
1: all right sir sir section 19 of the act jeko ta che unme aaye the guardian jeko ta not appointed by the court inenge thodo defined kanda ta hi section chapo che exactly
0: hin jo purpose hin section jo purpose yo a ke hane likhla the guardian not appointed by the court hin jo sir char ingredients sabka pehro yo a suppose ki agar bar jeko ward a unne ji saji di saji jeki welfare a uha state paan di khane state jo matlab a court ward court uha paan di
1: khane
0: jo property ji bhi unne ji penji bhi ta in situation me no need to appoint the guardian choki court paan di zimmedari khane
1: thi okay
0: unne jeki bhi welfare a uha court ji zimmedari a ठीकु आहे देन ॿार एडल्ट ॿार मेच्योर थी वियो आहे वॾो थी वियो आहे ॿार सोच सम्झ वारो थी वियो आहे पंहिंजी प्रॉपर्टी खे या पंहिंजे वालिद साहिब जी तरफ़ां मदर जी तरफ़ां फैमिली जी तरफ़ां अगरि उहो ज़िमेदारी पाण डिसीशन्स पाण वठी सघे थो त पोइ हुनजी गाडियन अपॉइंट करण जी ज़रूरत न आहे टियों इहो आहे की अगरि ईअं सम्झो के हिकिड़ी नाबालिग न्याणी आहे अंडर 15, अंडर 17, अमूमन तव्हां रूरल एरियाज़ में ॾिठा हूंदा अर्ली चाइल्ड मैरिज शादी जो कॉन्सेप्ट आहे 15 सालनि में 16 सालनि में ॿार शादी कराए छॾंदा बट द पेरेंट्स हैज़ बीन सेपरेटेड या शी हैज़ बीन ऑर्फन वीचारी यतीम थी वई आहे त इन सिचुएशन में उनजी शादी थी वई आहे त अगरि हस्बैंड उन करेक्टर से बीठल आहे जेके असां अर्ली में डिस्कशन कयासीं त अगरि कोर्ट अपॉइंट कंदी त गार्डियन जा करेक्टर कहिड़ा हुजनि इल मैनर्ड न हुजे मेंटली चैलेंज न हुजे कोई डिसेबिलिटी न हुजेसि कैपेसिटी ऑफ माइंड हुजेसि माना सोच सम्झ ज़िंदगी जा सुठा फ़ैसिला करे
1: सघे
0: ठीकु आहे ऐं सुठे इख़लाक जो हुजे ठीकु आहे त उन सिचुएशन में नो नीड टू अपॉइंट अनदर गार्डियन जेको हुनजो हस्बैंड पाण ई कोर्ट सम्झे थी त हुनजो हस्बैंड पाण ई बहितरीन गार्डियन आहे पंहिंजी वाइफ जे लाइ त हिन सिचुएशन में कोर्ट गार्डियन अपॉइंट न कंदी आहे चोथों पॉइंट इहो आहे बाबर के ॿिन्हिनि मां कोई बि अगरि पेरेंट आहे पेरेंट्स में ज़िक्र मां कयुमि अगरि मादर आहे या मदर आहे या फादर आहे ॿिन्हिनि मां कोई बि हयात आहे त हुनजा बेस्ट डिसीशन वठी सघे थो अगरि फादर हयात आहे त मदर बेस्ट गार्डियन आहे अगरि मदर न आहे त फादर इज़ अ बेस्ट
1: गार्डियन
0: सो दीज़ आर द फोर कंडीशन जंहिंजे विच में कोर्ट को नयो गार्डियन अपॉइंट नथी करे सघे
1: ठीकु आहे सो सर सेक्शन 20 जेको आहे त फिड्यूशरी रिलेशन ऑफ गार्डियंस टू वॉट आहे एज़ वेल एज़ सेक्शन 25 बि आहे इन ते तव्हां थोरो असांखे डिफाइन कंदा
0: फिड्यूशरी जो मतिलबु आहे इतमादी रिलेशनशिप
1: ऑल राइट
0: इतमादी जो मक़सदु इहो आहे की कोर्ट कंहिं बि गार्डियन खे खे को प्रॉपर्टी सां रिलेटेड इशूज़ हुजनि कंहिंजी माइनर सां, उन में काई बि ट्रांसेक्शन थिए थी, उहा ट्रांसेक्शन अल्टीमेट ॿार जे ई फेवर में हुजे. अगरि कोई मूवी प्रॉपर्टी आहे, कोई प्रॉपर्टी रेंट ते ॾिनल आहे या प्लॉट आहे, अगरि प्लॉट सेल आउट बि करणु चाहिनि था त परमिशन लाज़मी आहे. उहा परमिशन कोर्ट ई ॾींदी परमिशन, पर इहो ज़रूरु ॾिसंदी त छा उनजो बेनिफिट, उन ट्रांसेक्शन जो बेनिफिट माइनर ताईं पुॼे थो. अगरि जो बेनिफिट माइनर ताईं पुॼे थो पियो ऐं उहो ॿार जे हक में ॻाल्हि वञे थी, त उन रिलेशन खे चइबो आहे फिडिशरी रिलेशनशिप. माना कोई बि अहिड़ो ट्रांसेक्शन कहिड़ी बि क़िस्म जो जेको घुमी फिरी ॿार खे ई फ़ाइदो ॾिए, ठीकु आहे, ऐं उनजी जेतिरी बि वॉर्ड आहे, जेतिरी बि उनजी प्रॉपर्टी आहे, उनजी लुक आफ्टर करे बहितरीन तरीक़े सां, उन पॉइंट खे असां चवंदा फिडिशरी रिलेशनशिप, के गार्डियन उनजी हर हिकु पॉइंट, हर हिकु उनजी प्रॉपर्टी खे ईअं लुक आफ्टर करे, ईअं ट्रांसेक्शन खे ॾिसे जे उहो पंहिंजी ज़ाती ज़िंदगी में, पंहिंजी ज़ाती ज़िंदगी जा फ़ैसिला वठंदो आहे, पंहिंजी ज़ाती प्रॉपर्टी जा फ़ैसिला वठंदो आहे, ऐं जीअं ज़ाती अमल कबो आहे की हिन सां मूंखे फ़ाइदो पुॼंदो, उनजा सॼा डिसीशन ईअं हुजनि जो पंहिंजी ज़ाती ज़िंदगी जा फ़ैसिला वठी, पर अल्टीमेट फ़ाइदो कंहिंखे थिए, माइनर खे थिए.
1: ऑल राइट, सो सर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्चार्ज ऑफ गार्डियन अंडर सेक्शन 40. What is this?
0: तव्हां हिकिड़ो ॿियो 25 पुछियो मूंखां.
1: जी 25 बि पुछियो.
0: सेक्शन 25. सेक्शन 25 खे अगरि असां डिफाइन कयूं, सेक्शन 25 जो मक़सदु इहो आहे की अगरि को पेरेंट या कोई बि लीगल गार्डियन नेचुरल हुजे या डिफेक्टो हुजे या टेस्टामेंट्री हुजे, अगरि उहो वठणु चाहे ॿार खो, कंहिं वटि सपोज हिकिड़ी टेम्पररी कस्टडी आहे, जीअं पाण डिस्कशन टेम्पररी कस्टडी आहे, अञा कोर्ट कंहिंखे ॾिनी न आहे, अगरि उहो वठणु चाहे थो त हे ॿार जी जेकी कस्टडी आहे मूंखे ॾिनी वञे, छोकी मुंहिंजो जेको ॿारु आहे, जेको माइनर आहे, जंहिं वटि आहे उते प्रॉपरली ट्रीटेड नथो थिए पियो,
1: ओके,
0: ठीकु आहे, उनखे उन उन ॿार खे न उहा नरिशमेंट आहे, न उन ॿार खे उहा एजुकेशन आहे, न उन ॿार खे उहा स्कूलिंग आहे, न उन ॿार खे उहो जेको माहौल मिले थो, एनवायरमेंट मिले थो, जंहिंमें उहो सुठे तरीक़े सां बा अख़लाक हिकिड़ो माण्हू, हिकिड़ो बहितरीन सिटीज़न थी सघे थो, उन सिचुएशन में 25 दाख़िल कंदा आहियूं की कोर्ट कस्टडी छा कंदो आहे, चाहे अगरि पेरेंट आहे, मदर आहे, सपोज उहा ज़िंदगी नथी ॾेई सघे त उहा वठी करे पीउ जे हवाले करे वेंदा आहिनि, अगरि पीउ आहे उहा ज़िंदगी नथो ॾेई सघे त उहा माउ जे हवाले करे डिस्चार्ज ऐं सीसेशन खे मां हिकिड़ी कैटेगरी में रखंदुमि.
1: ठीकु आहे,
0: डिस्चार्ज जो मतिलबु आहे माना पंहिंजे कम खां फारिग थी वञणु. सीसेशन में इहो हूंदो आहे त अगरि सपोज कोई बि कोर्ट कंहिंखे बि पंहिंजो गार्डियन अपॉइंट करे थी ॿार जो, त अगरि उहे कंडीशन्स फुलफिल थी थी वञनि त ऑटोमेटिक ई जेकी कंडीशन आहे गार्डियनशिप जी उहा टर्मिनेट थी थी वञे.
1: ठीकु आहे,
0: जंहिंमें अगरि मिसाल ॿार आहे, बालिग आहे, ॿार आहे, बालिग थी वियो, ठीकु आहे, गार्डियन आहे, उहो नेचुरल डेथ करे गुज़ारे वियो, या माइनर आहे, वीचारो 18 ताईं पुॻो ई न डेथ करे वियो, ठीकु आहे, त इन सिचुएशन में छा थींदो आहे त असां हिनखे डिस्चार्ज चवंदा
1: आहियूं. ओके,
0: ॿियो इहो डिस्चार्ज जो मक़सदु इहो हूंदो आहे जेके असां सीसेशन चवंदा आहियूं. डिस्चार्ज ऐं सीसेशन टर्म्स अलॻि अलॻि लिखियल आहिनि गार्डियंस में, पर अगरि जेके तत खणंदासीं, समरी खणंदासीं, तव्हांखे साॻी मिलंदी. ॿियो कोर्ट डिसाइड करे की जेको गार्डियन आहे उहो गार्डियन उन क्वालिफिकेशन से बीठो या न बीठो. अगरि उन क्वालिफिकेशन से बीठो आहे त हुनखे कंटिन्यू रखंदे. अगरि उन जेके असां प्रीवियसली क्वालिफिकेशन ॿुधायूंसीं, अगरि उन खां डाइवर्ट थी वियो आहे त ऑटोमेटिक ई उनजी गार्डियनशिप खे डिस्चार्ज करे दे विल अपॉइंट द न्यू गार्डियंस. सो सीसेशन एंड द डिस्चार्ज आर द सेम थिंग. बाक़ी रही तव्हांजी रिमूवल ऑफ द गार्डियन. रिमूवल ऑफ गार्डियन में ईअं सम्झो के माइनर आहे, उन ते ज़ुल्म कयो थो वञे, माइनर कंप्लेन करे थो मूंखे पढ़ाई जी जॻह ते मूंखां जेका न ॿिया ग़लति कम था वता वञनि. ठीकु आहे, सपोज़ अगरि असां पंहिंजी माहौल जी रियलिटी अगरि असां माहौल में थोरो ॻाल्हायूं, हूंदो न, मूंखे नथो लॻे ईअं न हूंदो, अलाह करे ईअं न हुजे. कुझु माण्हू छा कंदा आहिनि, ॿार जी कस्टडी वठी करे उन मां जेको बि उन्हनि खे मिलंदो आहे प्रॉपर्टी जे पॉइंट, चाहे उहो मोबल हुजे या मोबल हुजे, कुझु बि मिलंदो आहे, उहो सेल्फ इंट्रेस्ट जे करे ॿार खे अडॉप्ट करे छॾंदा. पोइ बाद में उन ॿार खे माना ग़लति तरीक़े सां इस्तेमालु करणु या अॻिते सेल आउट करे छॾणु या उनखे
1: बॉलीवुड जी हिकिड़ी मूवी बि असां ॾिठी आहे, ईअं आहे त प्रॉपर्टी जी वजह सां जेका आहे त उनजी केयर कई वेंदी
0: आहे,
1: उनखे मतिलबु एजुकेशन बि न ॾिनी वेंदी आहे, देन आफ्टर जेको आहे त आफ्टर 18 उन खां जो आहे सॼी प्रॉपर्टी पंहिंजे नाले
0: माना मिसाल आहिनि न. त असल में असांजी जेकी मूवीज़ आहिनि उहे बि रियल लाइफ खां इंस्पायर्ड कुझु माण्हू छा कंदा आहिनि जी प्रॉपर्टी ते असांखे चवंदो सेल्फ इंट्रस्ट पर पर्पस छा हूंदो आहे त जीअं हे वॾो थिए त असांखे एतिरो पाले रखूं जीअं वॾो 18 जो थिए त असां सॼी प्रॉपर्टी पंहिंजे नाले ते कराए
1: छॾूं
0: सो अगरि उन कंडीशन ते अगरि कोर्ट अगरि कंसीडर कंदी त अगरि जेकी गार्डियन अपॉइंट थियल आहे उन मेनर ऐं उन प्रिस्क्रिप्शन से नाहे बीठो जेके प्रिस्क्राइब थियल आहिनि ठीकु आहे उन प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट में नाहे उन प्रिस्क्राइब्ड मेनर में नाहे
1: बीठो
0: त कोर्ट छा कंदी उनखे रिमूव करे छॾंदी टर्मिनेट करे छॾंदी उन जॻह ते ॿिए कंहिंखे गार्डियन अपॉइंट कंदी
1: ठीकु आहे सो सर प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो आहे तमामु सुठी असां गुफ़्तगू कईसीं अबाउट द टॉपिक गार्डियन एंड गॉड्स एक्ट सो लास्ट में तव्हां कहिड़ो असांजे जेका व्यूअर्स खे पैगाम ॾियणु चाहींदा अबाउट दिस एक्ट एंड एज़ वेल एज़ जेके जिते बि तव्हां सम्झो पिया जीअं तव्हां ई पंहिंजी गुफ़्तगू में इहा ॻाल्हि कई त माइनर्स खे जेको आहे त सही तरह ट्रीट न कयो वेंदो आहे कुझु कस्टोडियन पारां उन्हनि खे कहिड़ो तव्हां मैसेज ॾियणु चाहींदा
0: मुंहिंजो मैसेज सिर्फ़ु पेरेंट्स खे इहो हूंदो की ख़ुदा कॾहिं बि घर में मामलात अहिड़ा थियनि त ॻाल्हियुनि खे मसलनि खे ठाहियो जहिड़ा थींदा रहंदा आहिनि हर घर में जहिड़ा थींदा आहिनि पर हर जहिड़े जो सल्यूशन कोर्ट न आहे असां त वकील आहियूं ठीकु आहे असां हिन सिचुएशन खे ॾिसूं था पिया इवन एज़ अ वकील एज़ अ जज असांजी इहा ई मेन जेको पर्पज़ हूंदो आहे की पाण में ठही वञनि जॾहिं बि कंहिं कोर्ट में को केस ईंदो आहे त आई एम द सोल विटनेस ऑफ दैट थिंग के जज हिकिड़ा हूंदा न 100% मां ॾिठो आहे जजिस खे उहो 100 न 1000% जेको आहे न एफर्ट्स ॾींदा आहिनि त हे पेयर ठही वञे
1: पाण
0: हे जोड़ो ठही वञे लास्ट खां लास्ट जज पेन घुमाइण खां अॻु में डाइवोर्स तलाक कुल्ला माना डिक्लेयर करण खां अॻु में मां जजिस खे ॾिठो आहे के एॾो त राज़ी कंदा आहिनि माना अलाह जो हदीस सां रसूल जो हदीस सां अलाह जूं आयतूं वलिन जा मिसाल आइमा जा मिसाल दुनिया में थींदड़ मुश्किलातूं पेरेंट्स जे ॿारनि जे मथां ईंदड़ मुश्किलातूं जज न वेठो हूंदो आहे ईअं लॻंदो आहे जन घर जो भाती वेठो
1: आहे
0: घर जो वॾो वेठो आहे एॾो कोशिशि कंदो आहे पाण में ठही वञनि डिसीशन कहिड़ो बि अचे असां पाण में न ठहंदासीं उन खां पोइ बि जज छा कंदा आहिनि बाबा ठही अचो
1: सही
0: तारीख़ मिली वेंदी आहे वरी तारीख़ मिलंदी आहे मां पाण पंहिंजी अखियुनि सां ऐं पंहिंजे सां पाण कंहिं फ़ैसिले में टे टे तारीख़ूं बि वरितियूं आहिनि ॿ तारीख़ूं वरितियूं आहिनि जजिस इन करे चवंदा आहिनि ठही अचो जॾहिं ॾिसंदड़ सिचुएशन वर्स्ट आहे नथा ठहनि देन जजिस छा कंदा आहिनि मजबूर थी करे अनाउंसमेंट प्रोनाउंस करे
1: चवंदा
0: डिसीशन बहरहाल मुंहिंजो चवण जो मक़सदु आहे की अगरि को ॿार सपोज़ छो की रसूल पाक बि फरमायो आहे न की अगरि यतीम जी कोई परवरिश कंदो हुनजी सार संभाल लहंदो त क़यामत में मूंसां ईअं बीठो हूंदो जीअं ॿ आङरियूं इशारो करे ॿ आङरियूं हिननि में को दरमियानी गैप न आहे ईअं क़यामत में मूंसां गॾु बीठो हूंदो अगरि तव्हांखे कंहिं बि ॿार जी गार्डियन या कंहिं बि ॿार जी कस्टडी मिले थी उनखे ईअं पालियो जे पंहिंजो बचो सम्झी करे
1: बिल्कुलु एग्ज़ेक्टली
0: हुनजी प्रॉपर्टी ते या उनजी कंहिं बि शइ ते तव्हांजी
1: नज़र न हुजे
0: के यतीम खे पालण के यतीम जी परवरिश करणु ऐं वक़्त लिए करे को बहितरीन इंसान थो थी वञे इहो सदिका जारी आहे इन खां वधीक इंसान लाइ छा खपे जेको रसूल सां क़यामत वारे ॾींहुं खुले

तेरे हिस्से में बचा कुछ नहीं, होती वफा कुछ नहीं, गलत को मिलती सजा कुछ नहीं है, जिसके पास न ताकत उसकी परवाह कोई नहीं। ये आप दिलों में लेके बैठे सबसे ऊपर खुद को कहते गुना असर, किसी की ना फिकर, किसी की जान की ना परवाह, इससे थोड़ी दुनिया चलती है, रोशनी भी बहुत जाएंगे खुद की आग में नफरत।

0: सच।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, जो मसल के फेंक भी दूंगा ना तो कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

कुछ जो शिकायतें हम तक पहुंची हैं उसका भी मुझे बड़ा अफसोस है। उम्मीद नहीं थी कि पीपुल्स पार्टी की तरफ से जिनकी हुकूमत थी, जिनका वजीर आजम था, उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। मुखालिफिन के साथ अच्छा सलूक किया है,

0: आजाद कश्मीर का माहौल हमेशा बहुत अच्छा रहा है और उसके अंदर इस तरह के जरासीम अगर दाखिल हो जाए तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये हारना जीतना तो किस्मत की बात होती है और फिर उनकी शिकायतें जो हैं वो मेरे ख्याल है कि किसी वक्त बैठ के जरूर सुनेंगे।
1: सियासी मुखालफत दुश्मनी में तब्दील न थियण घुर्जे कुछ शिकायतूं असा तई पहुंतियूं जैते अफसोस थियो। उम्मीद न हुई तो पीपल्स पार्टी तरफा को शिकायत जो मौको मिलंदो। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग डेखारे रही है, मुल्क तरक्की करे रो है। मरी में पार्टी इजलास के खिताब कंदे नवाज शरीफ चयो तो आजाद कश्मीर चूंडन के बिन मरहलन में नून लीग कामयाबी हासिल कई। जड़ी तरह पंजाब तब्दील थी रो है, अड़ी तरह आजाद कश्मीर के भी तब्दील थियण घुर्जे। नून लीग डिलीवर न कर तो इतना जो अवाम नाराज थो। खैबर पख्तूनख्वा के वे वजीर जो वफाकी मालियाती मुंतकली में 6 अरब 40 करोड़ रुपया देने का इनकार। सोहेल आफरीदी तो वफाकी हुकूमत बजट का पैरियां बिन सूबन जिया के पी का भी वाधू रकम की घुर कई हुई। उन्होंने वाधू रकम की फरहमी के पीटीआई बानी से मुलाकात संदस इजाजत से मशरूत किया हो। जिम थियल जिलन के 11 कौमी मालियाती कमीशन में आइनी जायज हिस्सो देने भी शर्त हो। बानी से मुलाकात न करण से खैबर पख्तूनख्वा वाधू रकम की मुफाहमती यादाश्तनामे से सही न कई। वजीर अला पंजाब मरियम नवाज चयो है तो नू लीग गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियती पार्टी न होने बावजूद पीपुल्स पार्टी के हुकूमत ठहण की दावत दिनी, पर अफसोस है जो उन्होंने आजाद कश्मीर में दांधली जा कूड़ा इल्जाम मड़िया। गिलगित बल्तिस्तान में खटण से दांधली की गाल न थी, आजाद कश्मीर में हारण से दांधली जहा इल्जाम मड़िया वह। मरी में नू लीग आजाद कश्मीर के पार्लियामानी पार्टी इजलास के खिताब कंदे मरियम नवाज चयो तो आजाद कश्मीर की आवाम दुखिन हालत में बेहतरीन फैसलो कर नू लीग के कामयाब कर। रफेड़ कतलेआम रतोछाण एहतजाज ए हड़ताल के वोट की ताकत से शिकस्त मिली। जितियों साजिशू नू लीग के खिलाफ थियं शायद ही कें भी पार्टी खिलाफ थी होजन।

0: आज़ाद कश्मीर जी पाबंदी मड़ियल एक्शन कमेटी ऐं भारतीय फ़ौज जो गठजोड़ बेनकाब कश्मीरनि पारां इंतशारी कमेटीअ जो बयानियो रद्द करण बाद सहूलतकार भारतीय फ़ौज खुलियल तौर साम्हूं अची वई। भारतीय फ़ौज पाकिस्तान मुख़ालिफ़ जज़्बा भड़काइण लाइ पर केरन सेक्टर में वॾनि स्क्रीन ते वीडियोज़ हलाए छॾियूं। माहिरनि मूजिबि भारतीय फ़ौज वालारियल कश्मीर में थींदड़ ज़ुल्म लिकाइण लाइ वीडियो ज़रिए कूड़ी प्रोपेगेंडा करे रही आहे। आज़ाद कश्मीर वासियुनि भारतीय प्रोपेगेंडा रद्द करे छॾी आहे। कराची जी अदालत में नौजवान व्यापारी मीर रज़ा केस जी ॿुधणी अदालत पारां जांच में सुस्ती ते गणती ज़ाहिर। 24 अगस्त ताईं जांच मुकमल करे रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत। अदालत रिमार्क्स ॾींदे चयो त वालिद ख़ानदान ऐं शहरी परेशान आहिनि। हिकु माण्हूअ जो क़तलु थियो आहे, जांच करे हक़ीक़तूं साम्हूं आणियो। अदालत मीर रज़ा जे भाईवार मोहम्मद अहमद जी अबूरी ज़मानत में 10 ॾींहनि जी वाधि करे छॾी। पुलिस सां जांच में सहकार करण जी बि हिदायत। वकील जिब्रान नासिर चयो त मीर रज़ा जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी चाहियूं था। क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज़ लतीफ़ पलीजो खे NCCI पारां जारी कयल सवालनामो KTN न्यूज़ हासिलु करे वरितो। मजमूई तौर ते अयाज़ लतीफ़ पलीजो खां 19 सवाल कया विया। अयाज़ लतीफ़ पलीजो खे NCCI पारां जवाब जमा कराइण लाइ 24 कलाकनि जो वक़्तु ॾिनो वियो। दुनिया जे कंहिं बि मुआशिरे औरत खे महकूम रखी तरक़ी नाहे कई। आइन पाबंद बणाए थो त मुल्क में हर शहरीअ जा हक़ बराबरि आहिनि। औरतुनि खे बाख़्तियार बणाइण ताईं तरक़ी मुमकिन नाहे। आर्ट्स काउंसिल कराचीअ में 9 वेमन लॉ कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत चयो त इंसानी हक़नि खे हर मुआशिरे में अहम सम्झो वेंदो आहे। औरतूं पंहिंजो पाण खे कंहिं बि लिहाज़ सां कमज़ोर न सम्झनि। पुट वारी सोच नियाणियुनि लाइ बि रखो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन गॾियल चटाभेटी इम्तिहान 2024 जा हतमी नतीजा जारी करे छॾिया। 21 उमेदवारनि खे नौकरियूं ॾियण जी सिफ़ारिश। प्रोवेंशनल मैनेजमेंट सर्विस लाइ 6 ऐं डेप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस लाइ 15 उमेदवार कामयाब करार ॾिना विया। SPSC मूजिबि 21 उमेदवारनि जी मुक़ररी लाइ सिफ़ारिश कई वई आहे। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ख़िलाफ़ मुतासिर उमेदवारनि जे एहतजाजी कैंप 23 ॾींहं बि जारी। احتجاج کندڑن گڈل چٹابیٹی امتحان 2024 جا حتمی قرار ڈئی جاری کیل نتیجہ رد کرے چھڈیا۔ اگوان چیو تے ایندڑ مرحلے بابت مشاورت جاری ہے، جلد احتجاج جو دائرہ ودھائن جو اعلان کیو ویندو۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN نیوز۔
2: سکرن کے ہو तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो GFM 90.8।